फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, मई सन 2026। इस समय सुबह की 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता

0: चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
2: मैं कार में भोपाल से इंदौर जा रहा था। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे तथा उनका 8 वर्षीय पुत्र। एक स्थान पर रास्ते के किनारे एक फलक लगा हुआ था जिसमें लिखा था, सौजन्य से सभी खुश रहते हैं। और मुझसे पूछा, स्वामी जी यह सौजन्य क्या है? बेटे, अच्छा व्यवहार सौजन्य कहलाता है। सौजन्य का अर्थ होता है सुजनता, भद्रता। सबके साथ मेरा व्यवहार भद्रता का होना चाहिए। यदि कोई घर पर मेरे पिता या किसी बुजुर्ग से मिलने आया हो तो उससे व्यवहार करने के 2 प्रकार हैं। एक तो यह कि पूछते ही मैं कह दूं कि नहीं, वे घर पर नहीं हैं और दरवाजा बंद कर लूं। कि यदि आगंतुक वय में मुझसे बड़े दिख पड़ते हैं तो उन्हें नमस्कार करूं और उनसे कहूं कि आइए, तशरीफ लाइए। फिर उन्हें बैठाकर मैं कहूं कि वे तो नहीं हैं, यदि कुछ काम बताने लायक हो तो बता दीजिए। यह दूसरा तरीका सौजन्य कहलाता है। मान ले कोई मेरे कार्यालय में आया और किसी काम के बाबत पूछने लगा। एक तरीका यह है कि मैं रूखेपन से उत्तर दे दूं कि आगे जाकर पूछ लीजिए, यहां का काम यह नहीं है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि मैं नम्रता पूर्वक काउंटर का नंबर बताकर कहूं आप उस काउंटर पर चले जाइए। यह दूसरा तरीका सौजन्य है। मैं रास्ते से जा रहा हूं, किसी ने कहीं का रास्ता पूछा। एक तरीका यह है कि मैं एक और हाथ दिखाकर कह दूं सामने जाकर पूछ लो। दूसरा तरीका यह है कि मैं उसके साथ कुछ दूर तक जाकर सही मोड़ दिखा दूं। यह दूसरा तरीका सौजन्य है। मैं बस या ट्रेन में चढ़ना चाहता हूं, बड़ी भीड़ है, धक्कमपेल है, एक वृद्ध या वृद्धा भी उस भीड़ में चढ़ने की कोशिश में है। मैं पहले उन्हें चढ़ने के लिए सहारा दे देता हूं, यह सौजन्य है। मैं बस से जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, लोग ठसाठस खड़े थे, एक बूढ़ी माई भी लाठी का सहारा लेकर झुकी खड़ी थी। यह देख एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और अपनी सीट उस बूढ़ी माई को देता हुआ बोला, आओ मैया यहां बैठ जाओ, यह सौजन्य है। अमरनाथ जी के दर्शन कर लौट रहे थे। हमने बालटाल वाला मार्ग लिया था। अमरनाथ जी की गुफा से उतरने के बाद लगभग 2 किलोमीटर हिमनदी पर चलने के पश्चात एक रास्ता बाईं ओर पंचतरणी के लिए मुड़ता है और दाहिनी ओर का रास्ता बालटाल जाता है। वहां से लगभग 1000 फुट की सीधी उतार है। हम लोग नीचे पहुंचे, देखा एक प्रौढ़ा रो रही है। पता चला उसे पंचतरणी जाना था और भूल से वह इस रास्ते से उतर आई है। उसके साथी बिछुड़ गए थे, वह यात्रियों के हाथ पैर जोड़ रही थी ऊपर चलकर रास्ता दिखा देने के लिए। दिन भी बीता जा रहा था, कौन यात्री 1000 फुट की सीधी चढ़ाई फिर से चढ़कर उसे रास्ता बताता। सभी हाथ से उसे रास्ता दिखाकर चले जा रहे थे। हमारे दल का एक युवा व्यक्ति उस प्रौढ़ा को सहारा देकर ऊपर ले गया और पंचतरणी का रास्ता दिखा आया। भले ही उसे इसमें 2 घंटे का विलंब हुआ और अतिरिक्त प्राण लेवा परिश्रम भी, पर एक सात्विक संतोष से उसका मुखमंडल दीप्त था, पराकाष्ठा है। इस प्रकार का सौजन्य अपने व्यवहार में प्रदर्शित करे तो भला कौन उससे खुश न होगा। ऐसा व्यक्ति सबको अपना बना लेता है। सौजन्यशील व्यक्ति दूसरे के कष्ट का अनुभव करता है और उसे यथासाध्य दूर करने की चेष्टा करता है। किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए भौतिक रूप से कुछ नहीं कर सके तो कम से कम वह सांत्वना के 2 शब्द तो कह ही सकता है। वाणी में विचित्र शक्ति होती है, वह विष का ताप भी पैदा कर सकती है और अमृत की शांति भी। सब को जानता हूं जिसके 2 शब्द रोगी की आधी पीड़ा को हर लेते हैं, और ऐसे भी चिकित्सक से मेरा परिचय है जिसके शब्द रोगी की पीड़ा को बढ़ा देते हैं। सौजन्य मानवता का एक ऐसा सुंदर पुष्प है जो अपनी सुरभि से जीवन को महका देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, सुबह 10 मिनट हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इसमें आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसका आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा के गाए भक्ति गीत।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, सुबह मिनट में है। आज चर्चा वार्ताकार है बंजारे।
3: बकरियों के नस्ल सुधार के लिए जो मुख्य बातें हैं होना चाहिए, उसमें जो रेशियो रखना चाहिए, लगभग 30 बकरी पे एक उन्नत नस्ल का बकरा रखना चाहिए, जिससे क्या है कि वो बकरी का 50% और बकरा का 50% मिल करके जो संतति होगा वो दोनों का क्रॉस का 100% एक इम्प्रूवड होगा। जो देसी है जिसमें ज़्यादा बढ़वार नहीं होता, उसका जो नस्ल होगा वो

0: अच्छा होगा, और 3 साल बाद जो बकरा है उसको बदलते रहना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद आप उसी को उपयोग करते रहेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, और वही जेनेटिक डिजीजेज है जो कुछ रिसेसिव जीन्स आते रहेंगे और जेनेटिक डिजीज होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमको 3 साल बाद उसको बदलना पड़ता है। और अपने को जो बकरा होना चाहिए, मतलब क्रॉस के लिए, वो बढ़िया जांचा परखा होना चाहिए, उसका अनुवांशिक गुण अच्छा होना चाहिए, वो ब्रीड के ओरिजिनलिटी में होना चाहिए, ताकि वो अपना 50% जीनोटाइप डोनेट कर सके। बकरियों को ऐसा है कि 15 महीना से लेकर के 18 महीना के बीच में प्रथम बार गर्भित कराना चाहिए। उससे पहले क्रॉस करा देने से फिर उसमें बहुत सारी समस्या आने लग जाएंगी। जितने दिन तक उसको बच्चा देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, कमजोर होना चालू हो जाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, जो अच्छा क्रॉस ब्रीड बच्चे हैं, उनको हमको बढ़िया से रख रखाव के साथ रखना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। साथ में ऐसा है कि हमारा जो लोकल बकरी है उसके लिए जमुनापारी ग्रेडेड बकरा है, सिरोही बकरा है, या फिर बीटल का बकरा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और बर्बरी जो बकरी होती है वो 2 बार बच्चा देती है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि 2 बच्चा देने वाली कुछ बकरी का रखें, जैसे बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, ये लगभग एक बार में 2 बच्चा देने का चांसेस इनमें ज़्यादा रहता है। तो 2 बच्चा होगा वो बढ़वार के श्रेणी में आएगा, उससे हमको ज़्यादा फायदा होगा। इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हीट पीरियड जो होता है बकरी में, स्ट्रेस पीरियड 19 दिन में रिपीट होता है, और लगभग 12 से 36 घंटा का हीट पीरियड होता है, और 6 से 20 घंटे इनका सक्सेसफुल सफलतापूर्वक समागम पीरियड किया जाता है, जिसमें इसमें गर्भधारण का चांस बहुत अच्छा रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। बकरी हमको नहीं कैसे पता करना चाहिए, तो उसका जो जेनाइटल रीजन है स्वेलेन रहेगा, पूंछ को हिलाते रहेंगे, खाना कम कर देगी, अशांत रहेगी, भीड़ से अलग रहेगी, तो हम उस लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम उसको बकरा से मिलाना चाहिए। और जो भीड़ का नाटा बकरा है या फिर वो जो अच्छा नहीं है ब्रीड वाइज, उनको हमको नसबंदी कराना या बंध्याकरण कराना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमको क्रॉस ब्रीडिंग का कुछ प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अपनाते हुए हमको अपने देसी बकरियों का नस्ल सुधार करना बहुत जरूरी है, जिससे हमको अच्छा प्रोजनी मिलेगा, और वही प्रोजनी हमारा एक स्टॉक बनेगा, जिससे हम भविष्य के लिए उसको एक पेरेंट स्टॉक के रूप में तब्दील कर सकते हैं।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आज सुबह 9 बजे, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। आज सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर, प्रसारण समय होगा सुबह 6:50। कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड हम लेकर आएंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 40 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम बाजे मांदर, सुगम संगीत का। और सुबह 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम। आप आज संध्या हमारे केंद्र से आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 8:30 पर, रात्रि होगा गैर फिल्मी गीतों के प्रसारण का 10 बजे, और रात 10:30 पर हम लेकर आएंगे शब्द।

0: संगीत का कार्यक्रम सुमनी झरोखा आप सुनेंगे आज सुबह 7:35 पर। महिला विहार का प्रसारण होगा संध्या 5:30 पर। आप उसकी बात का विषय होगा महिलाओं और बालिकाओं का अश्लील चित्रण दंडनीय अपराध। इसके साथ ही आप सुनेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। साथ ही होगा क्रम आपके पत्र आपके गीत। किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7:20 पर। होगा कीट एवं रोग नियंत्रण। सुनेंगे चर्चा दूध को खराब होने से बचाएं शीतलीकरण अपनाएं ये चपेगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये केंद्र है 107 MHz पर।
1: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले खाने के लिए नहीं दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल लाइव टीवी ऑन डिमांड फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम डिजिटल रेडियो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं आज रामचरितमानस का भाग 6।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे वाणी जयराम। सुबह के 6:50 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है समूह स्वर में देशगान, रचना है चंद्रसेन विराट की।

समोसर में देश का नबी आप सुन रहे थे एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह 5:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र व्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालक दलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपं ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे।
2: फ्रेश बॉलीवुड

0: कार्यक्रम फ्रेश हॉलीवुड का पहला गीत आपने सुना फिल्म आरआरआर से, स्वर था विजय प्रकाश, चंदना बाला कल्याण और चारू हरिहरन का। गीत लिखा था के शिवा दत्ता ने, संगीत था एमएम क्रीम का। आकाशवाणी 890 में यह सुनते हैं रेडियो श्रोता ईशा गुप्ता की प्रतिक्रिया।
1: आकाशवाणी 890।
2: नमस्ते, मैं ईशा गुप्ता बिलासपुर से रेडियो को उसके 90 वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रेडियो केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, खबरों और संस्कृतियों का सेतु रहा है। जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब रेडियो ही लोगों का सबसे विश्वसनीय साथी था। सुबह की शुरुआत भजन और समाचार से होती थी और रात का अंत मधुर गीतों के साथ। गांवों से लेकर शहरों तक हर घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी। रेडियो ने देश के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह जागरूकता फैलाने का माध्यम बना। किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी, छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और आम जनता के लिए समाचार, यह सब रेडियो के माध्यम से ही संभव हुआ। आज भले ही हमारे पास इंटरनेट, टीवी और स्मार्टफोन जैसे कई विकल्प हैं, लेकिन रेडियो की अपनी एक अलग पहचान और सादगी है। यह आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है। रेडियो की 90वीं वर्षगांठ पर हमें यह याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण माध्यम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में मैं वापस से रेडियो को उसके 90वें वर्षगांठ पर बधाई देना चाहती हूं।

सितारे जमी पे इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शरीफा पारुलकर के स्वर में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और

0: मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फ्रेश वाली बोर्ड।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे फिल्म सूर्यवंशी का गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन के स्वर में। रचना थी रश्मि बैराग की, संगीत था कौशिक गुड्डू और अक्ष का।

0: भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर था जुबिन नौटियाल का, संगीत खंडूरी का, संगीत था गौरव गुप्ता का।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

मिखा सिंह और अनमोल मलिक के स्वर में भी आप हंगामा टू का गीत सुन रहे थे। गीत लिखा था समीर ने, संगीत था अनु मलिक का। इसके साथ ही कार्यक्रम फ्रेश वाली बोर्ड अब संपन्न होता है। सुबह के 7:35 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

झरोखा कार्यक्रम सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी दीदी बहनी मल्ला गोमती के राम राम जय जोहार। संगवारी हो आज के झरोखा मा जानबो केचुआ के बारे मा रोचक जानकारी। संगवारी हो केचुआ हर एक प्रकार के कीड़ा है जोन हर माटी के भीतर मा रहते। आमतौर मा एला बरसा के दिन मा पानी या भुइया मा रेंगत हुए देखथन और जमीन के भीतरी ला खोदथन त बहुत अकन केचुआ दिखाई देते। केचुआ ला किसान मन के संगी घलो कहे जाते काबर की एकर मल ले मिट्टी उपजाऊ होते जेकर ले किसान मन के पैदावार अच्छा होते। आज केचुआ ले जुड़े कई ठन रोचक तथ्य ला जानबो। संगवारी हो दुनिया भर मा केचुआ के लगभग 7,000 ले भी अधिक प्रजाति पाए जाते जेकर अकेला 2,000 प्रजाति अकेला अमेरिका मा पाए जाते। केचुआ मन अपन त्वचा मा सांस लेते ओकर पास फेफड़ा या आने कोनो श्वसन तंत्र नी होए। देखे जाए तो एहर एमन बर फायदा होते काबर की केचुआ हमेशा माटी में रहते तो त्वचा में सांस लेहे में आसानी होते। एमन ला बुढ़े के खतरा नहीं रहे। केचुआ मन ला अंधियार में रहना पसंद है ओकरे बर एमन अधिकतर रतिया के बाहर निकलते और दिन के समय ला लगभग 1.5 फीट नीचे रहते। ओकरे कारण एमन ला नाइट कॉलर के नाव ले भी जाने जाते। केचुआ मन के मुँह के पता लगाना बहुत ही मुश्किल होते काबर की एमन के मुँह और पूछी एके जैसे होते और एमन दोनों तरफ चल सकते। ओकरे पता नहीं चले कि कौन हर मुँह है और कौन हर पूछी है। संगवारी हो दुनिया के सबसे बड़का केचुआ ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड में पाए जाते। ओकरे बार एला केचुआ के घर भी कहे जाते। यहाँ पाए जवैया केचुआ के लंबाई 3 फीट हो सकत है। और रोचक बात संगवारी हो यदि केचुआ ला आधा भाग में काट दिए जाते तभो ले नहीं मरे बल्कि काटे हिस्सा हर एक नवा केचुआ बन जाते। लेकिन ये बात मा निर्भर करते कि एला कहाँ ले काटे घिस हावे कितना टुकड़ा काटे गए है। केचुआ मन नुकसान देह नहीं हुए एला अपन हाथ में पकड़ सकत हो। हालांकि एमन के 50 ऐसे प्रजाति है जेला आक्रामक माने जाते। एमन अजीब प्रकार के आवाज घलोक निकालते। केचुआ सिर्फ सड़े गले फल और सूखा पत्ता खाते। केचुआ माटी मल्ला गीला बनाए और पोषक तत्व ला स्थानांतरित करे में बहुत मददगार होते। भारत के कतको जगह में केचुआ से मछली ला घलोक मारे जाते फंदा बना के। संगी हो केचुआ हमार बर बहुत ही जरूरी हवे काबर की एमन माटी ले जहरीला पदार्थ ला बाहर निकालते और जमीन ला अच्छा बनाते। केचुआ के खाद ला फूल पत्ती पेड़ पौधा मा डाले जाते। खेत खार मा आगी नहीं लगाना चाहिए एमा हमार मित्र कीड़ा केचुआ रही थे जोन हर हमार फसल ला अधिक उगाए मा मददगार होते थे। तो संगवारी हो आज के झरोखा मा जाने हमार मितनहा कीड़ा केचुआ के बारे मा और रोचक जानकारी लेके आबो हमार अगले क्रम मा आवा सुनी ने सुघर लोकगीत।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा भी आप सुन रहे थे। सुबह के 7:45 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर।

राजकुमार अग्रवाल और अमचेरी बाई के स्वर में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। हाँ, आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम आइए आप सुनते हैं अमचेरी बाई और ताराबाई के स्वर में ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनेंगे राजकुमार अग्रवाल के स्वर में।

राजकुमार अग्रवाल के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम बाजी मंदिर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 में घर्ष पर सुबह 55 मिनट हुए हैं। कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। हम अनुप्रसारित करेंगे सुगम संगीत का सुबह का समय होगा फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आप फरमाइश का हमारे केंद्र से आज संध्या 5:10 पर 10 मिनट पर संध्या 7:30 पर 8:20 पर आप सुनेंगे विविध संगीत और होगा क्रम हमर हाथी हमर गोट बनाएंगे संध्या 20 मिनट पर आप जो होगा महिला बालिकाओं का अश्लील चित्रण दंडनीय अपराध विश्व पक्षी दिवस पर विशेष भेंट वार्ता पर कीट एवं रोग नियंत्रण

0: में आप सुनेंगे चर्चा चाहे शिक्षा, ये आज की नसीहत के अंतर्गत सुन रहे थे। ये सात मेगाहर्ट्ज़ पर
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनने को है अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
7: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में

0: अध्याय की शुरुआत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। माँ बनना एक बहुत सुखद और अद्भुत अनुभव होता है, पर यह सुरक्षित भी हो इसके लिए ज़रूरी है गर्भधारण से लेकर प्रसव तक हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत, जो श्री सत्य साई माँ एवं बाल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भधारण की आदर्श आयु क्या होती है?
1: आइडियल एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो 20 साल से 35 साल का होता है। अगर 20 साल से कम आयु है तो महिला उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, एंड 35 साल से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि 35 साल के बाद उसको गर्भ धारण करने में ही दिक्कत आती है। जैसे कि जो एक फीमेल में क्या रहता है कि हमारी AMH वैल्यू, हमारे जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके अगर 35 ईयर के बाद जो एज लिमिट होती है उसमें उसके अंडे की भी एजिंग होने लग जाती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना खुद में ही एक चुनावदाय चीज़ होती है, एंड देन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है 35 साल के बाद तो उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे BP का बढ़ जाना, एनीमिया, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटिक जो हो जाती हैं फीमेल्स, और प्लस जो इनका

0: नेचुरली जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अदर एज लिंप फैक्टर से अलग रहते हैं. तो जो आइडियल एज होती है वो 35 होती है, 35 के पहले होती है.
1: अच्छा.
0: तो इसमें क्या रहता है, अदर कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बच्चों में. अगर माँ 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली या कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं. तो बेस्ट है कि आप 35 के पहले ही प्लान कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं प्लान कर सकते, बट हाई रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर इट. जब माँ रेडी है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है.
1: जी. तो पहली बार जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं उनकी देखभाल में किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं?
0: जो पहली बार माँ बनती हैं वो महिलाएं अक्सर, उनको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है. वो अपने मतलब उनको एक तो वो हर चीज़ घर परिवार में अलग सलाह मिलती है उनको, वो उनके बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं
1: जी.
0: तो उनको शारीरिक जो बदलाव आते हैं जैसे थकान लगना, शाम के समय बुखार जैसा लगना, उल्टी घबराहट लगना, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाती कि इसको कैसे डील करें. तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको ये डर को हटाना है, ये असहजता को हटाना है कि ये सब चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये नॉर्मल चेंजेस है जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से है. प्रेगनेंसी जब हमको कंसीव होती है तो एक प्रोजेस्ट्रॉन करके एक हार्मोन होता है जो बहुत पीक लेवल, मतलब जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा उल्टी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा घबराहट जैसा लगना
1: जी.
0: तो इसके लिए इनको डरने की बात नहीं है, इसमें बॉडी में खाने में या फिर अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें चेंजेस करने होते हैं. जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इनको फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लेना है, इनको कम से कम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करके खाना है. अगर ये बहुत देर खाली पेट रहती है तो दिक्कत की बात है, और अगर ये पेट भर के खाती है तो इनको उल्टी और वॉमिटिंग हो गई. अगर खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी की वजह से वो और नौजिया और वॉमिटिंग्स होते हैं. अगर पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो फिर पछता नहीं, वो फिर उल्टियाँ हो जाती है. तो एक फ्रिक्वेंट एक मील डिसाइड रखना है कि मुझे हर 2-2 घंटे में, हर 3-3 घंटे में लाइट खाना खाना है, और जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश बना होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी कम खाना है, और जो पसंद है वो सब खा सकते हैं. ऐसा नहीं मुझे ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती. जो आपको, अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, लेकिन आप कोशिश करिए आप उसको लें. लेकिन आपको दूध पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही तो थोड़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर मत लीजिए. दूसरी बात यह है कि शाम के समय जो थकान लग रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली अडेप्ट हो जाएंगी. इनिशियली क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3-4 महीनों में ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो इसमें क्या है कि, और महिलाओं का सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है. तो शुरुआत के समय में वजन नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी वो खाने में परहेज कर रही हैं, ऑलरेडी उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उस समय वजन बल्कि थोड़ा कम रहता है, या बढ़ा तो 1 से 2 किलो बढ़ेगा. लेकिन बच्चे की वजह से वो वजन उनको अभी नहीं बढ़ाना है या बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको बस एक साधारण घर का खाना खाना है जिसमें वो थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले, या जो नॉर्मल घर का खाना है वो भी सेवन कर सकती हैं. उसमें कोई फल और जो जो चीज उनको पसंद है, जो चीज उनको खाने में भा रही है या फिर वो खा सकती है, उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सब चीजें वो ले सकती हैं. बस इसमें ये रखना है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, अभी नीचे झुकना, वजन उठाना, ये सब चीजें अवॉइड करनी रहती हैं.
1: कोई ऐसी चीज भी होती है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान?
0: देखिए यूजुअली जो पपाया होता है, पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं. तो हम लोग प्रेगनेंसी करती है तो एएनसी विजिट यूजुअली तो 8 होना चाहिए, मतलब WHO के अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 4 विजिट तो उसको करना चाहिए. जो पहला 3 महीना होता है जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव की और 12 हफ्ते तक का, तो ये जो समय रहता है इसमें हम फर्स्ट मदर को हम बुलाते हैं. उसमें हम उनकी सबसे पहले बेसिक ANC प्रोफाइल, मतलब जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका HB कितना है, उसके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, उसके यूरिन कैसा, यूरिन टेस्ट हुआ जाता है इसमें, प्रोटीन्स या यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, देन ये सारी सिकलिंग वगैरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी बहुत प्रोन है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं. ठीक है, इससे ये रहता है कि एक बेसलाइन हम शुगर भी चेक करते हैं मदर का उसी में, क्योंकि जब अगर बेसलाइन शुगर नॉर्मल है उसका और अगर 20

0: हफ्ते बाद शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक नहीं है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज के साइड जा रही है.
1: ओके
0: मतलब वो गर्भ के बाद जो डायबिटीज होता है उसके साइड जा रही है. तो बेसलाइन हमारे पास एक सारे जांच होने चाहिए जो हम एएनसी प्रोफाइल जो फर्स्ट विजिट में हम कराते हैं. दूसरी चीजें हम लोग ये कराते हैं जो फर्स्ट 3 महीने कराते हैं उस पर एक NTNB स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है. वो NTNB स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है. उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है. डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है. तो ये इनिशियली पहला मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम 3rd महीने में करते हैं. तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ. उस पर हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं. अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में सिखाते हैं. हम उसको सिखाते कि बॉडी तुम्हारी नेचुरली कैसे अब तुमको आगे डील करना है. तो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सेकेंड विजिट जो रहती है वो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है तो उसमें हम एक एनोमली स्कैन करते हैं जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है. वो एनोमली स्कैन में हम बॉडी हम बेबी को हेड टू टो स्क्रीनिंग किया जाता है कि बच्चे में सब चीजें ठीक है. कभी लाइक उसके लेंसेस कैसे हैं, उसके आईज से लेके उसके हाथ उसके टो उसके फिंगर्स एवरीथिंग उसमें स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है. और इसमें क्या रहता है जिन्होंने 3 महीने की सोनोग्राफी नहीं करवाई है वो अब इसमें क्वाड्रपल मार्कर में करवा सकते हैं 18 से 20 हफ्तों के बीच में. तो क्वाड्रपल मार्कर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. लेकिन जिनका ऑलरेडी डबल मार्कर हो गया है वो जरूरी नहीं कि क्वाड्रपल मार्कर भी करवाएं. और अगर 5th मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 20 वीक्स तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेबी को आगे कैसे हमको प्लांट आउट करना है. और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हमको लगता है कि क्वाड्रपल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो हम उसके आगे का टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल NIPT या एमनियोसेंटेसिस. NIPT मदर का ब्लड लेकर टेस्ट होता है जिसमें मां का ब्लड निकालकर उसको जेनेटिकली और क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग किया जाता है. एंड एमनियो अगर हमको 100% कन्फर्मेटरी चाहिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं है तो हम लोग फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं. उसमें मां के आसपास का जो पानी होता है उसको सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है. सोनोग्राफी गाइडेड रहता है ये. तो उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को जेनेटिकली इश्यूज नहीं है या क्रोमोसोमली बच्चा फिट है. अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते. तो सब एक एक स्टेप्स का एक एक विजिट का उनका बहुत इम्पोर्टेंस है. फिर बेबी का ग्रोथ आता है कि बेबी ग्रो कैसे कर रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है. अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको 600 ग्राम प्लस ऐसा रहना चाहिए, कितना उसकी लैग हो रही है. फिर 32 वीक्स अगर हो रहे हैं तो उसमें 2 kg के अराउंड आ रहा है, 1.7 to 2 kg. तो इनिशियली फिर हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं एंड इसी बीच में हम टेटनस या वैक्सीनेशन का भी इंक्लूड करते हैं जो विजिट्स आते हैं. तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप बोलोगे तो बेसिकली 2 वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट TT का जो वैक्सीनेशन लगता है टेटनस का वो 3 महीने में लग जाना चाहिए.
1: पहला टीका
0: 3 महीने में,
1: ठीक है.
0: और दूसरा टीका जो रहता है वो 1 महीने बाद लगता है जो फर्स्ट टीका लग गया है. लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहला TT का टीका ले लीजिए और जैसे 28 वीक्स हो गया 7वां महीना लग जाए तो TDAP करके एक वैक्सीनेशन होता है वो मोर एफिशिएंट रहता है. उसमें टेटनस भी कवर होता है, डिप्थेरिया भी कवर होता है और पर्ट्यूसिस भी कवर होता है बेबी का, ठीक है. तो उसमें माँ और बेबी दोनों का टेटनस का माँ का कवर हो गया, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया बच्चे का भी कवर हो जाता है. तो जिसके लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है तो हम टेटनस का 2 डोज इजिली लगा सकते हैं.
1: तो कम से कम 2 टीके बहुत
0: जरूरी है जी. क्योंकि क्या अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाएंगे तो क्लॉस्ट्रेडियम टेटेनी करके एक ऑर्गेनिज्म है वो अगर उससे वो क्या रहेगा कल को अगर डिलीवरी हो रही है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसमें मदर के लिए वो जानलेवा भी आगे बन सकता है. तो टेटनस मस्ट है लगाना
1: जी. जी ये बताइए कि संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कितना जरूरी है,
0: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या रहता है, एक्चुअली मैं आपको एक अपने पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी मम्मी जो सिंगल चाइल्ड थी एंड मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी की जो मदर, शी डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमोरेज। उन्होंने घर पे डिलीवरी हुआ एंड दैट लॉन्ग बैक एंड उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, मेरी वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो घर पे डिलीवरी कराना बहुत बहुत खतरे वाली चीजें हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हर सुविधा है मां और बच्चे को बचाने के लिए। पहली बात तो मां को शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल में आके अपनी सारी जांचें HB BP शुगर सारे चेक कराते रहना चाहिए, जिसमें वो स्मूथली 9 महीने तक अच्छे से स्वस्थली खींच सके, फिर वो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। और इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी कराने से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर बच्चा फंस रहा है या माँ को प्रसव होने के बाद बहुत ब्लीडिंग है तो हम उन सबको ट्रीट कर सकते हैं, हम माँ की जान को बचा सकते हैं तुरंत। तो मैम मेरे हिसाब से हर एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, कहा आपने। बातें और भी हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप आज हमारे श्रोताओं को?
0: मैम मुझे डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी गाना बहुत पसंद है, वो इतना एनर्जेटिक है एंड वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो मुझे वो सॉन्ग तो पसंद है।
1: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंवलजीत को। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपने खान पान पे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए जो उनके लिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हों।
1: देखिए, प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम सुबह दोपहर रात को खाते हैं, जो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से रहता है कि, तो वो ऐसा नहीं खाना है। हमको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना या उस मील को 5 से 6 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए और विटामिन्स भी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में जो जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स वाले जो घर के जो खाने वो भी भरपूर रहते हैं। उसमें आप दही ऐड कर लीजिए, उसमें आप एक ग्लास दूध ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपको, अगर उल्टियां नहीं हो रही है या फिर आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही है, आप वैसा खाना खाइए। लेकिन फिर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आप 14 वीक्स के बाद, 14 हफ्ते के बाद जब आप पहुंचती हैं, तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए हैं, तो उसमें राइस, चावल, पोहा, ओट्स, सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एंड देन प्रोटीन्स की बात आए तो प्रोटीन्स बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर कोई मांसाहारी नहीं खा सकता तो फिर वो पनीर खाए और सोयाबीन खाए एंड दाल, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें। में जो मूंग दाल का जो ओवरनाइट सोक, रात भर आप मूंग दाल को भिगो कर रख दिए, फिर वो अंकुरित दाल को कच्चा नहीं खाना। उस अंकुरित दाल को या तो थोड़ा स्टीम कर लेना है या फिर उसका कोई चीला बनाकर खाना है। उस चीला भी जो आप बना रहे हैं उस अंकुरित मूंग के दाल से, उसमें आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जैसे कुछ गाजर हो गया, कोई चुकंदर हो गया। चुकंदर तो बहुत अच्छा है खाने के लिए, वो ब्लड भी बढ़ा रहा है, तो उसमें गाजर, चुकंदर, कुछ पालक वगैरह पीस कर डाल दिया तो वो एक हेल्दी बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, देन कुछ एनर्जी के लिए हेल्दी फैट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आप घी थोड़ा मात्रा में लेना जरूरी है, घी और ऑयल हल्का मात्रा में लेना जरूरी है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए हमको ये जरूरत है, तो उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपके पास फ्रेश अवेलेबल है, और सुबह के समय आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जिसमें आप अखरोट रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं, किशमिश रख सकती हैं। जो काले किशमिश होते हैं वो शायद कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब अच्छे रहते हैं, वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो हर थोड़े थोड़े देर में आप थोड़ा खाइए, जरूरी नहीं आप एक साथ 3 रोटियां एक साथ खा रही हैं, नहीं होगा। तो आप एक ही रोटी खाइए, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा कुछ खाइए, या फिर 2 घंटे बाद फिर से रोटी खाइए। तो वैसे आपको फ्रीक्वेंटली स्मॉल और हेल्दी डाइट लेना, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए फूड का। जैसे आप डेली बस चिला खा रही हैं तो उसमें आपके शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा। आप उस चिला में इंक्लूड कर दीजिए गाजर, चुकंदर या हरी सब्जियां या हरी भाजी, या दाल बना रही हैं तो दाल के अंदर इंक्लूड सोयाबीन कर दीजिए, दाल या सोयाबीन को मिलाइए, या सोयाबीन के साथ कुछ और रख लीजिए, सोयाबीन को ग्रेट करके उसका आप भुर्जी जैसा खा लीजिए। तो एक बाउल हमेशा अपने पास रेडी रखना है कुछ हेल्दी चीजों का। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बनाना ले लीजिए, एक फ्रूट्स डेली इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दही के फॉर्म में ले लीजिए, अगर आपको दही भी नहीं पसंद है तो आप पनीर के रूप में ले लीजिए।
0: एक सवाल ये भी आता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान व्यायाम और योग गर्भस्थ महिला के लिए आवश्यक है?
1: बिल्कुल आवश्यक है। योगा यूजुअली सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन गर्भावस्था में वो ज्यादा रोल प्ले करता है। मदर ऑलरेडी एंजाइटी, फियर, मतलब एंजाइटी और सब घबराहट से उभरती रहती है, तो उसके लिए योगा करना, उसके लिए थोड़ा मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका प्रभाव गर्भ पर भी पड़ता है। इसीलिए आजकल शायद गर्भ संस्कार के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है कि जिसमें 7वें महीने में गर्भ में जो बच्चा रहता है उसमें सुनने की शक्ति आती है। तो माँ जो पढ़ रही है, माँ जो देख रही है, माँ जो फील कर रही है, माँ स्ट्रेस को जो रिलीफ कर रही है, तो उसमें बेबी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और योगा तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही योगा करिए कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए योगा करना, ऐसा नहीं होता।

0: हर योगा का भी अलग पैटर्न्स होते हैं. फर्स्ट जब पहला समय चल रहा है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. आपको सांस लेने छोड़ना, उसमें अनुलोम विलोम ये सब चीजें करनी है ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे. एंड उसमें आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है. लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर क्रॉस करते हैं, तब आपको थोड़ी कुछ फ्लोरिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं. तो शुरू से ही एकदम हैवी एक्सरसाइजेस वर्कलोड वगैरह नहीं करना.
1: स्तनपान शिशु के लिए कितना आवश्यक है?
0: स्तनपान शिशु के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो सबसे पहला तो एक माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाता है. ठीक है, स्तनपान माँ के लिए भी नया रहता है, बच्चे के लिए भी वो चीजें उतनी ही नहीं रहती हैं. तो माँ बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाती है. इसमें सबसे ज्यादा रोल आता है हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि वो माँ को सिखाए, प्रॉपर टेक्निक सिखाए, प्रॉपर तरीका बताए, कितनी बार दूध पिलाना है वो समझाए. और जो पहला मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है बच्चों के लिए. तो अगर बच्चे को स्वस्थ रहना है, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो माँ का दूध ही उसे पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में जो एसेंशियल विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स है, इम्यूनोग्लोबुलिंस है, वो आपको बाहर के गाय के दूध में या फिर किसी डब्बे के दूध में नहीं मिलेगा. बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से लेके हर चीजों के लिए माँ का दूध जरूरी है. दूसरी बात यह है, एक तो बॉन्डिंग रहती है, दूसरा बच्चे के लिए, तीसरा इससे ये एक बैरियर का भी, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है. जब तक माँ दूध बच्चे को पिला रही है, तब तक कम चांसेस रहता है उसकी प्रेगनेंसी दोबारा से होने का. तो एक उसके लिए भी जरूरत है. दूसरा, इसका बहुत सारे माँ के ऊपर, शरीर के ऊपर भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस वगैरह सब बहुत कम रहते हैं अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को.
1: जी, क्या स्तनपान न करवाने से माँ को कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है?
0: देखिए, बहुत सारी माँ को ऐसा लगता है कि दूध तो आ रहा है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पिला सकती, नहीं पिला पाती हैं. तो उनको लगता है कि बच्चा पी नहीं रहा है, लेकिन दूध इकट्ठा हो रहा है, दूध जम रहा है. तो उससे क्या होता है कि माँ को एक समय के बाद वो ब्रेस्ट में लंप्स बन जाता है. तो उससे उसको पीड़ा, दर्द होना, बुखार आना, ये सारी चीजें दिक्कत आती हैं. तो माँ को पहले टेक्निक सही पता होना चाहिए कि कैसे बच्चे को सन से लगाना है और कितने बार दूध पिलाना, और दूध को वहां जमने नहीं देना है. उससे इन्फेक्शन का भी सोर्स होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो ये तो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन अगर लॉन्ग प्रोलॉन्ग देखा जाए तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी प्रिवेंट होता है. अगर आप बच्चे को प्रॉपरली पिला रहे हैं, प्रॉपरली उसको देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर होना, ओवेरियन कैंसर होना, बहुत सारी चीजों में ये सब प्रिवेंशन का रोल फॉलो करते हैं.
1: आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में. ये बताइए कि एनीमिया और कुपोषण हमारे राज्य की महिलाओं में एक प्रमुख और ज्वलंत समस्या है. इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं महिलाएं?
0: एनीमिया और कुपोषण आज भी हमारे जो भारत में है वो बहुत ज्यादा है, गर्भवती महिलाओं में देखा गया है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी महिला प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भवती हो रही है, तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है कि कौन एनीमिक है. तो जो पहली बार जब हम माँ को मिल रहे हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, हम उसी समय ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि मदर को एनीमिया है या नहीं. एनीमिया मतलब कि ब्लड 10 ग्राम से कम होना, और सीवियर एनीमिया मतलब 7 ग्राम से कम होना. तो अगर वैसा रहता है तो माँ को शुरुआत से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, शुरुआत से ही उसको आयरन सप्लीमेंटेशन. अगर वो नहीं डील कर पाती, अगर 7 ग्राम से ब्लड कम है, तो डायरेक्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं. और एनीमिया अगर कैरी ऑन करेगी तो वो माँ के लिए तो नुकसानदायी है, वो बच्चे के ऊपर भी असर करता है. तो एनीमिया को ट्रीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसको स्क्रीनिंग किया जाए तो ये इजीली हम इसको ट्रीट प्रिवेंटेबल कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि एनीमिया जो मदर में है वो बहुत कॉमन देखा जाता है. उसके लिए डिवॉर्मिंग होती है, मतलब कि अंदर पेट में अगर कीड़े हैं तो हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स जो आंगनवाड़ी में भी मिलती है एल्बेंडाजोल के नाम से, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी देते हैं. इनफैक्ट लाइक हर गवर्नमेंट सेटअप में वो डिवॉर्मिंग हुआ जाता है माँ का. तो उससे भी जो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है वो उसमें हेल्प होती है. प्लस आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट सप्लीमेंट्स हम देते हैं, अगर आयरन टैबलेट्स वो नहीं टॉलरेट कर पा रही है, उससे नहीं हो पा रहा है, वो उल्टियां हो जा रही है या आयरन से उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मदर आयरन नहीं ले रही है, तो फिर हम उसको इंजेक्टेबल आयरन के रूप में भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास आयरन सुक्रोज रहता है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का ऑप्शन है। तो ये सब चीजें जो हमारे पास मेडिकल सारी सुविधाएं हैं जिससे हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें और बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकें। एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूं कि टैबलेट्स कैसे लेने होते हैं आयरन के। आयरन की टैबलेट्स कभी भी दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट से नहीं लेते, या चाय के साथ जो अल्कलाइन चीजें होती हैं उसके साथ नहीं लिया जाता। उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो आयरन की टैबलेट्स आप जब भी ले रही हैं उसके साथ एक नींबू का पानी ले लीजिए, या पहले से एक विटामिन सी की एक च्यूएबल टैबलेट ले लीजिए, ताकि आयरन का रेट का एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ जाए। अगर आप दूध के साथ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आयरन की टैबलेट्स लेनी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन की टैबलेट दिन में मत लीजिए, थोड़ा शाम के समय या रात के समय सोते समय लीजिए, ताकि आपको जो हल्का फुल्का क्रैम्प्स आए वो आप डील कर सकें, क्योंकि थ्रू आउट आप दिन भर आपको अनइजीनेस लगेगा तो फिर आप आयरन टैबलेट वैसे ही लेना बंद करेंगी। तो आप एक पर्टिकुलर एक सुटेबल अपना टाइम ले लीजिए कि मुझे इतने समय आयरन की टैबलेट लेनी है, रात को सोते समय मैं लूंगी एक नींबू के पानी से या फिर एक ऑरेंज जूस के साथ या फिर विटामिन सी के साथ, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर कंवलजीत, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। धन्यवाद मैम।

0: वित्त कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थी प्रीति यादव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह बजे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की। इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चुखेरवाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय

बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले। बहुत ही प्यारा गाना था ये साथियों। ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट।

0: सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

मलक महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये योजना जरूरतमंद परिवारों की बड़ी चिंता दूर कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक नवदंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही रेडक्रॉस की असली पहचान है। इस अवसर पर जूनियर और यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन भी आयोजित हुआ। लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बालोद जिले के डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडीलोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आज दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। सुबह मान लीजिएगा आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 10:10 पर, सुबह 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम पॉप टाइम आप सुनेंगे आज संध्या 5:10 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। प्रसारण होगा रात्रि 8:20 पर। लेकर आएंगे आज रात 10 बजे और रात्रि 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी का। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोट का प्रसारण होगा संध्या 5 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम लेकर आएंगे संध्या 5:30 पर। आपस की बात का विषय होगा महिलाओं और बालिकाओं का अश्लील चित्रण, दंडनीय अपराध। इसका भेंट वार्ता पक्षी दिवस के अवसर पर। आज की वनिता विहार में आप सुनेंगे क्रम आपके पत्र आपके गीत। किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण। साथ आज आप सुनेंगे चर्चा दूध होने से बचाए शीतलीकरण अपनाए, ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्रनाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था। और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें, तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: FM 100.7 MHz पर की आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत में भी अब जगजीत सिंह को सुन रहे थे। रचना थी अख्तर आजाद की।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: 90. भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुबह के 30 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो मित्र सुशील का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है श्रोता साथियों की पसंद पर। ग्राम नागर गोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। भास्कर से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। इन्हीं के साथ किकिर मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग से हैं संतोष शर्मा और रुक्मिणी शर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गीत।

0: आशा भोसले के सुर में अभी आपने फिल्म तीसरी कसम का गीत सुना। गीत लिखा था शैलेंद्र, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी 890 में आइए सुनते हैं रेडियो श्रोता विनोद कुमार पटेल की प्रतिक्रिया।
4: आकाशवाणी 890।
5: नमस्कार, मैं विनोद कुमार पटेल खपरापाली बरमकेला से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आकाशवाणी रायगढ़ का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे श्रोताओं तक निरंतर उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पहुँचा रहा है। मैं विशेष रूप से आकाशवाणी रायगढ़ के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, चाहे वह कृषि से जुड़े कार्यक्रम हो, शिक्षा पर आधारित चर्चाएं हो, स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित प्रसारण हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। सभी अत्यंत उपयोगी, रोचक और समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होते हैं। आज का कार्यक्रम भी अत्यंत प्रेरणादायक और जानकारी पूर्ण रहा। इसकी प्रस्तुति शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी, जिससे हर वर्ग का श्रोता आसानी से जुड़ सका। इसमें दिए गए उदाहरण और संदेश हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे, जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। आज के समय में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है, जो हमें सही दिशा दिखाएं और सकारात्मक सोच विकसित करें। आकाशवाणी रायगढ़ इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे ही उपयोगी और प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे, जिससे हम सभी को नई जानकारी और प्रेरणा मिलती रहे। अंत में आकाशवाणी रायगढ़ की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

AIR at 90. कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है श्रोता साथियों की पसंद पर। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड बंदर नगर इंदौर से हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। बलौदा कलतरा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। आइए अब सबकी पसंद को सुनते हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी के स्वर में भी अपने फिल्म जीने की राह का गीत सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिए श्रोता साथियों की पसंद पर। माटा पर दतरंगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झवेंद्र कुमार वर्मा। रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से हैं लंबोदर प्रसाद पटेल, फैलेंद्र कुमार, तेज राम, सुरेंद्र कुमार, पीयूष, हेमंत कुमार, राम खयाल, तुलाराम, अरिमन, आयान, देवा, श्रीधर, रूप बसंत, मानस और हरिशंकर पटेल। श्री सिरिंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
4: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इस समय सुन रहे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अंतिम गीत लिए हमने फिल्म आप आए बाहर आई से। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से हैं चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या। ग्राम थरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। गौशाला पर रायगढ़ से हैं विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता।

मोहम्मद रफी के सुर में अभी अपनी फिल्म आप आए बाहर आई का गीत सुना। तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता ये आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो मैं इस पते पर खत लिखें किस आप रायगढ़ पिन कोड 001। आप ईमेल से भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com। ईमेल से फरमाइश भेजते समय सब का नाम लिखना ना भूलें।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 11 बजने को हैं। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरिठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज़ भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों, हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें, 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों, ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज़ के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहाँ से जाने को कहता है कि जहाँ बाहर है वहाँ तुम चले जाओ, जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ चले जाओ पंछी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज़ के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के संदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तोके क्षेत्र के जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपा कर रखी गई थी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा।

0: अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के, फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही

शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है। वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियाँ इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है, और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफ़र। हमारे साथ इस सफ़र में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद

लगे हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है, इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापट हमें बताने हैं। फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है। हम आपको बता देते हैं, इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज़ को मिलजुल कर आवाज़ दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीज़ों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज़ देता, न किसी चौखट पर उसका इंतज़ार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तगे से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज़ थी जिसमें अपनापन था, एक नज़र थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए सुरीली आवाज़ के लिए मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है दो बीघा ज़मीन।

और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार। याद कीजिए फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबू लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज़ दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज़ है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज़ क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज़ थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज़ नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं, क्यों नहीं है चिड़िया शब्द? हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे, उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूँ सफर करना और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो ज़रूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज़्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्द

0: दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ

0: औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजना और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अब

0: परणा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस वक्त आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक
1: आंख मिल जई है सजनिया से।

0: लगता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। विविध भारती
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।
3: हुस्न हाजिर है

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्टमास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी ना हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर, हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूं तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूं, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं? ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
3: वरना क्या होगा?
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: श्रृंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां? देखना ये श्रृंगारम कैसे

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा।

0: आपका नाम?
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है या?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है।
0: छोड़ मैं अभी। छोड़
3: मुझे। चल बंगे, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
1: अरे मार डाला रे, इस दागिये ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
3: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाकिये, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है, अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाल उधर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो। मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है जब उसका

0: भीतर है तब ओह पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
2: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊँगी।
1: जी,
2: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊँगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें।
2: जी,
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
2: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके।
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल, जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना
1: क्या बात,
2: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
2: जी।
1: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
2: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ,
2: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी।
2: मेरी एक पोती वहाँ रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
2: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
2: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां, ये
1: हाँ,
2: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
2: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
2: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे, हाँ। वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
2: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
2: ऐसे मैं
1: है।
2: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
2: उसकी झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को
1: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे, सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब जो
0: मिलकर आती थी,
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध, सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ

0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी,
1: और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह,
1: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी, जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी, जी,
1: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती, पुरुष
1: पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला

0: अंदाज चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तरस साहब से।
1: हाँ हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स हैं
1: जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा,
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
1: वाह
0: बहुत मजा आया
1: क्या बात
0: टूर
1: है।
0: में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया,
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका
0: ओ
1: इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। हाँ। फिर उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ, हाँ।

0: उनके तो क्या है कि किस्से में, अब सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
1: जी
0: के लिए,
1: जी
0: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
1: हाँ
0: और आपको कोई बोलेगा नहीं भी मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
1: जी जी
0: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
1: जी
0: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
1: हाँ
0: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
1: अच्छा
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना। तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
1: अच्छा
0: दम मारो दम।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
1: जी जी
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
1: अच्छा
0: थे। तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
1: हाँ
0: किया
1: हाँ
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों को सामने से सुनते बैठूं,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे। रफी
1: मगर
0: साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं
1: नहीं गाया।
0: गाया।
1: अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन सा
0: जरूर
1: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे प्रस्तुत किया?
1: लोगों ने बहुत नाम भी रखे, क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब दूसरों की टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी,
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई। उसकी वजह यह है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी, खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें। तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाई है, तो लोग क्या, हाँ हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं है, उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। हाँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस
0: अच्छा।
1: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला, वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा।
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया,
1: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: हूँ। क्या बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए, कि कोई भी गाना हो
0: हाँ।
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो।
0: हाँ।
1: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
0: जी,
1: गाने
0: जी।
1: अभी नहीं आवाज़ जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का।
0: हाँ।
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
0: क्या बात है।
1: भेजे।
0: अच्छा,
1: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ गाए, लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
0: अच्छा।
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे दम लगा के रहेशा, इस फिल्म
1: दम
0: का
1: लगा के
0: है।
1: रहेशा उसका
0: गीत, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम पे,
1: मोमो के है।
0: तो
1: और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत जी, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं किसी,
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी हाँ। गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: वो तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था,
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है।
0: हाँ,
1: मतलब
0: हाँ।
1: शब्दोच्चार या कोई
0: जी।
1: हरकत या कोई मुर्की या हाँ। उनकी उनकी तरह से
0: जी।
1: तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी
1: रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनुभव
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: जी, बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी
0: हाँ।
1: जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ,
1: वो तो गाओ।
0: हाँ।
1: नकल नहीं आती उसमें
0: जी,
1: लेकिन
0: जी, जी।
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती
0: हाँ।
1: है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी
0: बिल्कुल सही
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में
0: जी जी,
1: वो क्यों कर देते इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
1: श्री रामचंद्र,
0: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ,
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ,
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही

0: जरूरी है।
1: जी जी
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है,
1: हाँ,
0: तो फ्लैट लगेगा और उस
1: जी,
0: भाव
1: जी,
0: नहीं आएंगे उसमें।
1: हाँ,
0: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है, किसी के आवाज़ में। तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में,
1: हाँ,
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
1: अच्छा,
0: मेरे आवाज़ में अपने आप आ गया वो सब
1: ओहो,
0: रियाज करके,
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि
1: हाँ
0: ज़्यादा नहीं करना,
1: हाँ
0: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज़ में बहुत ही।
1: अच्छा,
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी ये
1: हाँ
0: शील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी।
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा
0: बहुत, तीन बार
1: होगा
0: हुआ ठीक, चार बार हुआ, इतने बार या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ। तो
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबरी
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के,
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी,
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54, द हाउस जिसे मॉड्यूलेशन फॉर द की उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी,
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुलानी मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह, मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज़्यादा
0: क्लासिकल
1: जाने
0: सिंगिंग
1: जाते हैं,
0: जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा
0: क्लासिकल
1: जाए, जो
0: बहुत
1: लाइट
0: अच्छा,
1: कमर क्लासिकल ज़्यादा लगते हैं, ऐसे
0: लेकिन
1: उनके कई गाने हैं।
0: दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे,
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से दिए।
0: लेकिन उनका जो आवाज़ में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज़
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह,
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना दो।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावट। गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ।
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया,
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए उनके, 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की, उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो
1: जी, जी,
2: तो
1: जी।
2: ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया, प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे, वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है,
1: मेरे
2: लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए, बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
2: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह,
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी,
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा,
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए देखा,
2: गाते देखा तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती थी
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी, अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
2: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने, तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
1: आया। यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
2: अरे बापरे,
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।

0: पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
1: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर, ओ सड़क,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
6: सुनिए,
5: कहिए,
7: सुनिए एक खुशखबरी।
5: कहिए ना।
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
7: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, सस्कालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, सरगा, शिवनाथपुर, ललितपुर, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये आम गांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़ेकेला, सिंघी छाप, डोंगा भावना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाल, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरीपानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट। हमारे हाथी, हमारे गोट। हमारे हाथी, हमारे गोट।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:06 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार का वक्त होगा 5:30। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में रायपुर केंद्र से ये अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण। सुनेगा नसीहत, दूध को खराब होने से बचाएं, शीतलीकरण अपनाएं। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:00। रात्रि 10:00 सुनिएगा विविध संगीत और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सूर्यामिनी का समय होगा 10:30। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप टाइम, पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी के गाए हुए इस पॉप गीत को, रचना है समीर की।
1: जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को

पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं आसमा ग्रुप के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है पलाश और दीक्षांत शेरावत की।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम की अंतिम प्रस्तुति है। लीजिए सुनिए शान के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है शान के, संगीत राम संपत का।

अभी आप सुन रहे थे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

0: वनिता विहार सुनने वाली हमारी सभी सखी सहेलियों को आपकी अपनी रेडियो सखी प्रियंका की ओर से प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अक्सर हम समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराधों को देखते हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध जिन्हें बहुत छोटा मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, घटित होते रहते हैं। कानून की जानकारी के अभाव में महिलाएं भी ऐसे अपराधों को नज़रअंदाज करती रहती हैं। अपराधियों को महिलाओं द्वारा इस तरह नज़रअंदाज किए जाने पर अपराध को फिर से करने के लिए उत्प्रेरणा मिलती है। बहनों, यह एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। बालिकाओं और महिलाओं का अश्लील चित्रण न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि कानूनन एक गंभीर अपराध भी है। आज के डिजिटल युग ने जहां तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ा है, वहीं इसका काला पक्ष भी सामने आया है। महिलाओं और विशेषकर बालिकाओं का अश्लील चित्रण समाज के नैतिक पतन को दर्शाता है। यह न केवल किसी व्यक्ति की गरिमा और निजता का हनन है बल्कि उसे मानसिक रूप से तबाह करने का एक हथियार भी बन गया है। भारतीय कानून में भी इसे अक्षम्य अपराध माना गया है। बहनों, भारत में इस अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं जिनके बारे में जागरूकता होना अनिवार्य है। कानून के तहत विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखन या चित्रों के माध्यम से महिलाओं के अश्लील चित्रण पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री प्रसारित करता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ दंड का भी प्रावधान है। बहनों, पॉक्सो एक्ट बच्चों के अश्लील चित्रण के मामले में अत्यंत सख्त है। इसमें अपराधी के साथ साथ ऐसे सामग्री अपने पास रखने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बहनों, यह अपराध केवल तस्वीर या वीडियो तक सीमित नहीं रहता, यह महिलाओं के प्रति समाज में नज़रिए को भी विकृत करता है। पीड़ित व्यक्ति गंभीर मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाता है। बहनों, कानून अपना काम कर रहा है लेकिन नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि आप सोशल मीडिया या इंटरनेट पर ऐसी कोई सामग्री देखते हैं तो उसे साझा करने के बजाय तुरंत cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करें। अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोगों के बारे में शिक्षित करें। किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध साहित्य दिखाना या फिर अश्लील तस्वीरें भेजना, ऐसी परिस्थिति में भी वह व्यक्ति कठोर कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, फिल्म, लेखन, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ या आकृति का उत्पादन नहीं करवाएगा, ना ही बेचेगा और ना ही किराए पर देगा, ना ही प्रसारित करेगा या डाक द्वारा भेजेगा, जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं या बालिकाओं का अश्लील चित्रण हो। इस तरह के अपराधों पर महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। बहनों, हमें यह समझना ही होगा कि किसी भी महिला या बालिका का सम्मान ही एक सभ्य समाज की पहचान है। तकनीक का उपयोग किसी का जीवन संवारने के लिए होना चाहिए, उसे अपमानित करने के लिए नहीं। आइए संकल्प लें कि हम न तो ऐसे अपराधों का हिस्सा बनेंगे और न ही मुख दर्शक बनकर सहेंगे। तो बहनों, ये तो थी हमारी आपस की बात, अब आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। गर्मियों में पक्षियों की देखभाल एवं प्रबंधन विषय पर प्रियंका श्रीवास्तव से रजनी मिश्र की भेंट वार्ता।
1: बहनों, हमारा सराउंडिंग पर्यावरण है। हम हमारे पर्यावरण और प्रकृति के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीव प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया, जिसके अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें कहा गया जो जीव स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वह जीवित रहता है, पर जो जीव स्वयं को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता वह स्वयं मर जाता है या प्रकृति ही उन्हें मार देती है। मतलब जीव मौसम प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। इसे हम सबसे अच्छे से प्रवासी जीव के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। आसमान में एक झुंड में उड़ते रहना, फिर कहीं बैठकर चहचहाना हर किसी का मन मोह लेती है। पशु पक्षियों के जीवन से प्रकृति शोभायमान होती है, पर कैसे यही बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है रजनी मिश्रा जी। पहले तो रजनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद प्रियंका।
1: तो जैसे रजनी जी, मैंने यहाँ पे प्रवासी जीव का जिक्र किया, प्रवासी जीव होते क्या है?
2: प्रियंका, प्रवासी जीव वह होते हैं जो वर्ष के किसी विशेष समय में अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान चले जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर पुनः लौट भी आते हैं। इस प्रक्रिया को प्रवास यानी कि माइग्रेशन भी कहते हैं प्रियंका। इस प्रकार के जीव जो विभिन्न कारणों से प्रवास पर जाते हैं उन्हें ही प्रवासी जीव भी कहते हैं, है ना। और जैसे कि प्रवासी जीवों में सबसे अच्छा उदाहरण पक्षियों में के लिए अगर लिया जाए तो जैसे साइबेरियन क्रेन है, फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी भी है ना, जो सर्दियों के समय ठंडे देशों में भारत जैसे गर्म देशों में आते हैं और मौसम अनुकूल होते ही वो अपने घर लौट जाते हैं। प्रियंका, इसके अलावा कुछ मछलियां भी होती हैं, तितलियां भी हैं और स्तनधारी जीव भी प्रवास करते हैं।
1: तो आपके अनुसार ये कहना चाहिए कि मछलियों और तितलियों के सहित फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन जैसे जो पक्षी रहते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये प्रवास किन कारणों से होता है
2: प्रियंका? अगर कहा जाए ना तो प्रवासी जीव जो वर्ष के किसी निश्चित समय पर अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान चले जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अनुकूल परिस्थितियां है ना, तो अनुकूल परिस्थिति होने पर वो वापस

0: रहते हैं।
1: जी
0: इस पूरे प्रक्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं। यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण और रोचक व्यवहार भी है जो जीवों के जीवन या अस्तित्व और प्रजाति के संरक्षण से जुड़ा होता है।
1: मतलब आपके कहने का मतलब ये जो माइग्रेशन होता है वो जीवों के जीवन अस्तित्व प्रजाति के संरक्षण को बनाए रखने में सहायक होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखो भोजन की उपलब्धता होती है, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो भोजन ही होता है
1: जी
0: कि जब कोई भी व्यक्ति हो तो भोजन के लिए जाता है, उसी प्रकार से पक्षी है, जब किसी क्षेत्र में भोजन समाप्त होने लगता है तो पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है तो वो जीव ऐसे स्थान पर प्रवास करते हैं जहाँ उनको पर्याप्त तो भोजन मिले, है ना। उसी प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम का अत्यधिक ठंडा गर्म ये जीवों को असहनीय हो जाता है ना।
1: जी
0: तो वो क्या करते हैं, विशेष रूप से ठंडे देशों से सर्दियों के दौरान बर्फ जम जाने से भोजन और पानी दोनों की कमी हो जाती है, इसलिए वे गर्म में या अनुकूल जलवायु के स्थान पर चले जाते हैं। उसी प्रकार सुरक्षा भी होता है, यानी प्रोटेक्शन। कुछ जीव जीव शिकारियों या प्राकृतिक आपदाओं या कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए भी प्रवास करते हैं, है ना, देखा ही होगा।
1: हाँ, मतलब पक्षी जो का जो माइग्रेशन होता है मुख्यतः भोजन, सुरक्षा, अनुकूल मौसम पाने के लिए ही होता है।
0: हाँ बिल्कुल प्रियंका, इतना ही नहीं प्रियंका,
1: जी
0: कई जीवों में प्रवास एक स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति भी होती है।
1: जी
0: वे हर वर्ष एक निश्चित समय और मार्ग का पालन करते हुए प्रवास भी करते हैं, भले ही परिस्थितियां बहुत अधिक न बदली हो। फिर भी प्रियंका, वे वर्तमान में तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाने लगा है।
1: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया कब जाता है?
0: प्रियंका, विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस ना, ये हर वर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक
1: जी
0: मई के महीने में जो कि दूसरे शनिवार को होता है, और एक अक्टूबर के महीने में वो भी दूसरे शनिवार को होता है, और इस साल तो 2026 में यह दिन 9 मई 2026 को है कि यह मनाया जा रहा है।
1: मतलब 9 मई 2026 को इस वर्ष प्रवास विश्व प्रवासी पक्षी
0: जी
1: दिवस मनाया
0: मनाया
1: जा रहा
0: जाएगा।
1: है,
0: हाँ
1: तो इसके मनाने के उद्देश्य क्या है?
0: प्रियंका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित भी करना है,
1: जी
0: क्योंकि जरूरी है प्रेरित करना। प्रवासी पक्षी हर वर्ष हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा भी करते हैं, कई देशों के सीमाओं को पार करके आते हैं। प्रियंका, इस दौरान उन्हें अनेक खतरों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, शिकारी है, और उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट हो
1: नष्ट भी हो
0: जाना।
1: जाते हैं।
0: हाँ
1: जी, तो क्या विश्व प्रवासी दिवस के लिए कोई थीम डिसाइड की जाती है?
0: हाँ बिल्कुल की जाती है। इस साल की 2026 की थीम तो शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग वर्ल्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये जैसे कि इसका मतलब है कि साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना है।
1: मतलब इस साल की जो थीम है वो साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना है।
0: हाँ
1: जी,
0: प्रियंका,
1: तो ये बत
0: यह थीम ना इस बात पर भी जोर देती है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे वातावरण बनाए जाए जहाँ पक्षी सुरक्षित रूप से रह सके और अपनी यात्रा के दौरान विश्राम भी कर सके। इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जैसे पेड़ लगाएंगे, जल स्रोत का बनाना या फिर प्रदूषण को कम करना आदि।
1: मतलब कहना चाहिए कि जो पक्षियों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे पेड़ लगाएं, चाहे जल स्रोत का निर्माण करें, तो इस कारण से ये जागरूकता के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है।
0: बिल्कुल
1: तो पक्षियों के संरक्षण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं?
0: प्रियंका, पक्षी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना।
1: जी
0: वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, जैसे
1: जी
0: कि कीटों की संख्या नियंत्रित करना, बीजों का प्रसार करना, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाना। प्रियंका, देखा होगा आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण पक्षियों का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है ना,
1: जी
0: इसलिए उनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसके लिए हम कई उपाय भी कर सकते हैं, जैसे
1: जैसे
0: कि पेड़ पौधों का संरक्षण, वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पक्षियों के लिए घर या जल का स्रोत उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है ना, और
1: जी
0: रासायनिक कीटनाशकों का कम सॉरी रासायनिक
1: नाशकों का
0: कीटनाशकों,
1: उपयोग कम करना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: हाँ बिल्कुल,
1: जिससे कि उन लोगों को वो जो दाना खाएं तो उनके वो कीटनाशक उनके शरीर में ना
0: न
1: पहुंच पाए।
0: पहुंचे। हाँ
1: जी, तो रजनी जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: प्रियंका, मैं अपने श्रोताओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि पक्षी हमारे पर्यावरण का अनमोल हिस्सा है और उनके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए उनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। हमें लोगों को समझाना चाहिए कि जैसे हमें स्वच्छ पानी, हवा, भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पक्षियों को भी सुरक्षित आवास की जरूरत होती है ना। मैं और इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि मैं लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ प्रवास का दौर पूरा करके। उड़ता रहा आकाश

0: में जाने कितने हम पक्षियों के साथ बसता रहा, झकोरों से, धुशारापात से, प्राकृतिक आपदाओं से, एक नई दुनिया की खोज में, घरौंदों के लिए लाखों मील की उड़ान, ताकि नए सृजन हो सके। एक मौसम के आने के बाद नीला आकाश अपनी ओर खींचता है उड़ने को साथ समंदर पार, फिर एक नए प्रवास के लिए उड़ने को आतुर, भले ही नाम अलग हो, अमूर, फाल्कन, ग्रेटर फेमिंगो, ब्लैक बिल्ड, स्टिल्ट या कुछ भी कह लो, घर पर लक्ष्य एक है, प्रवासी पक्षी होना, प्रवासी पक्षी होना।
1: तो धन्यवाद रजनी जी, एक बहुत ही अच्छी जानकारी, और आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद प्रियंका, धन्यवाद श्रोताओं।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। अब हम चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर, और आज है हमारा कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। तो बहनों, इस क्रम में यह पहला पत्र आया है गौशाला पारा रायगढ़ से, और भेजने वाले हैं विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा और यीशु गुप्ता, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। तो आइए बहनों, सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

बहनों, अगला पत्र आया है केवटापारा रायगढ़ से और भेजने वाली हैं मालती निषाद, पार्वती, अनमोल और मीनू निषाद। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत।

बहनों, अगला पत्र आया है गणेश धाम परसुली डोंडी लोहारा से, और भेजने वाली हैं मोतीमबाई मानिकपुरी, धनवंतीनबाई और योगिताबाई, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

बहनों, समय हो गया है हमारे जाने का, तो दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रियंका को अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम वनिता बिहार का प्रसारण अभी हो रहा था। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में 6 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर

0: राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 10.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय होगा 6:10। कृषि चर्चा 6:30 पर 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस। देशगान का वक्त होगा 6:50। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। चित्रपट संगीत 7:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर का वक्त होगा 7:50। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा का वक्त होगा 8:30। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा सुबह 9:00। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा 9:55 पर और 11:55 पर। सुगम संगीत 10:10 पर। 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिन के 11:00 से 11:55 तक और 12:00 से शाम 5:00 तक। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम भजन संध्या। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:05 पर। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार 6:10 पर। 6:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत कानून की बात। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में इसका अनुप्रसारण होगा रायपुर केंद्र से 6:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:00। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा जायद मूंग उड़द में रस चूसक कीटों से बचाव। सुनेगा नसिया संरक्षित खेती से लाएं आर्थिक समृद्धि। गैर फिल्मी गीत 8:20 पर और फिल्म संगीत का पुनः आनंद ले पाएंगे 8:30 पर रात्रि 10:00। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी का समय होगा 10:30। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ।

0: 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6:10 हुए हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
4: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज छत्तीसगढ़ के कतकू न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के होइस आयोजन। न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद औ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में होइस आज बड़का रद्दा हादसा। ए घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के होगे मौत। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुईस। ए बेरा में न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गिस, जेमा आपराधिक प्रकरण के संगे संग मोटर दुर्घटना प्रकरण, बिहाव ले जुड़े परेशानी, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधित प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी ले संबंधित प्रकरण हा शामिल रहीस। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगा के लंबा बेरा के मामला सुनवाई करे जाही। पक्षकार मनला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फारम में देना होही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग हर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई के घोषणा कर दे है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताइन कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई ले शुरू होही, जो उनके 4 जून तक चलही। नामांकन पत्र 11 ले 18 मई तक भरे जाही, जेकर जांच 19 मई के होना है और नाव वापस लेके आखिरी तारीख 21 मई रखे गए है। मतदान एक चरण में 1 जून के होना है, जबकि परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयुक्त बताई है कि नगरी निकाय चुनई ईवीएम ले दलीय आधार मा और पंचायत चुनई मत पेटी के माध्यम ले गैर दलीय आधार ले कराए जाही। चुनई वाले जगह मा आदर्श आचार संहिता लागू हो गए है। जानवा के अनुसार नगरी निकाय मा अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनई कराई जाही। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के चलत बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण के शिविर के आयोजन हुईस। इस शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। ए बेरा में श्री वर्मा हितग्राही मनला ट्रैक्टर के चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और आने सामग्री भेंट करें। ए शिविर में 2300 ले ज्यादा आवेदन मिले रहीस, जेमा ले 272 आवेदन के मौका मही निराकरण करेगी से। छत्तीसगढ़ में अभी मकान सूचीकरण और मकान के गिनती के काम चलत है। इही कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा हा आज मुंडा गांव में प्रगणक मन कोती ले करे जात जनगणना के काम के निरीक्षण करी। ओमन हा प्रगणक मन ले मोबाइल लेके खुदे एक झीन मकान मालिक के घर में पहुंच गए और मकान गणना संबंधित सबो जानकारी लेके डिजिटल गणना ला पूरा करीन है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग हा सबो निकाय ला पीए के पानी ले होवत परेशानी ला दूर करे के निर्देश दीन है। विभाग हा सबो निकाय ला बोरिंग बोरवेल मान मा एक हफ्ता मा जांच करके ठीक करे बर कहीन है। संगे संग टूटे पाइपलाइन ला तुरते सुधारे और नाली ले होके जाए वाला पाइपलाइन और घर के कनेक्शन ला घलो स्थानांतरित करे के निर्देश दीन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चलत प्रदेश भर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1300 ले ज्यादा जोड़ा मन के बिहाव हुईस। ए बिहाव हा राजधानी रायपुर समेत सबो जिला में पारंपरिक रीति रिवाज के संग करेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा नवविवाहित जोड़ा मन ला बधाई दीन है। उमन हा कहिन है कि योजना हा जरूरतमंद परिवार के बड़े चिंता ला दूर करत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले पद्मश्री बर चयनित गोडबोले दंपत्ति लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण काले बिहिन्या 10:30 ले 11 तक करे जाही। ए कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
6: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
5: अब आगू बढ़बो बाची समाचार कोती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली 10 मई के नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और गर्मी ले निपटे के तैयारी के समीक्षा करही। एमा केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी के बीच अच्छा समन्वय, NDRF ला सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदा के बेरा शून्य जनहानि के दृष्टिकोण में सरलग ध्यान देना शामिल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मा काली रायपुर मा हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम मा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा शामिल हुईन। ए मौका मा उमन हा कहिन कि निस्वार्थ भाव ले लोगन मन के सेवा करना ही सबले बड़का धर्म हरय और इही रेड क्रॉस के असली पहचान है। कार्यक्रम मा लोक नृत्य, चित्रकला और नाटक प्रतियोगिता के विजेता मन ला इनाम दे के संगे संग प्रदेश के 64 रेड क्रॉस स्वयं सेवक मन ला प्रमाण पत्र देगीस। एकर अलावा अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान और समाज सेवा में योगदान देवैया लोगन मन के संग अच्छा काम करैया कलेक्टर मन ला घलो सम्मानित करेगीस। ए मौका में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सम्मेलन घलो होइस। उहें रायपुर जिला प्रशासन कोती ले प्रोजेक्ट छाव के चलत लोक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाएगीस, जेमा सामान्य बीमारी के संगे संग हृदय रोग, कैंसर, किडनी, स्त्री रोग और आने गंभीर बीमारी के निःशुल्क जांच करेगीस। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज हुए एक रद्दा हादसा में 3 झीन जवान लड़का मन के मौत हो गए। पुलिस हा बताइन कि देवरी गांव ले ए तीनों झीन हा मोटरसाइकिल ले डोंडी लोहारा कोती जात रहीन, फिर इही बेरा खैरीडी गांव करा आगू ले आवत कार हा ए मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दिस। टक्कर हा अतेक जोरदार हा रहीस कि ए तीनों जवान लड़का मन के मौका में ही मौत हो गए। एती सूचना मिलतेच पुलिस हा घटनास्थल में पहुंचीन और सब ला पोस्टमार्टम पर भेज के मामला के जांच शुरू कर दे है। ओती गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में घलो मझगवा गांव में एक ठिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हा रद्दा तीर बैठे 3 झीन मनखे ला टक्कर मार दीस, जेका से तीर कका और भतीजा के मौका में ही मौत हो गए और उन्हें एक झीन आने हा गंभीर रूप ले घायल हुए है। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल के टीम हा बड़का मात्रा में माओवादी सामान जब्त करे है। हमार संवाददाता हा बताइन कि सुरक्षा बल के टीम हा तलाशी अभियान के चलत तोके के जंगल में बड़का मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बनाए के सामान जब्त करे है, जेमा 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, राकेट लांचर और जिंदा

0: चक्रवात बने हुए हैं, उन्हें राजस्थान ले लेके मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ ले लेत हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है, जेकर से तीर मौसम में बदलाव आए है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग में पानी गिर सकत है, उन्हें 11 मई ले तापमान हा बढ़ सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज छत्तीसगढ़ के कतको न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के हुई आयोजन, न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में हुई आज बड़का रद्दा हादसा। एक घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के हो गए मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीन देवियों का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: ആകാശവാണി എട്ട് നയൻറ്റി.
1: यादों की बारात, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। मजरू की शब्द रचना है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: यस बॉस, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को सुरों में ढाला है जतिन ललित ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में वर्मा मलिक के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है उत्तम जगदीश ने। फिल्म का नाम वारिस।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने LPG गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। IPL T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने LPG गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 LPG कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने राजसमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इस बीच आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
9: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
8: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्रियां भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 272 आवेदन का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 से 11 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम मजगवां में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा चयनित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची कल जारी की गई। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आज राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
10: आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी जाने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर। बाकी जिले जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मई से प्रदेश में मेघ गर्जन का गतिविधि कम होने का चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 10 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक क्रमिक वृद्धि आने की संभावना है।
8: नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपये नकद, 6 मोबाइल और 1 नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घुघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में फिल्म शोर का ये गीत। संतोष आनंद ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सुनो सुनो,
1: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी एट 90 में ये सुनते हैं रेडियो श्रोता ईशा गुप्ता की प्रतिक्रिया।
5: आकाशवाणी एट 90।
6: नमस्ते, मैं ईशा गुप्ता बिलासपुर से रेडियो को उसके 90 वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रेडियो केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, खबरों और संस्कृतियों का सेतु रहा है। जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब रेडियो ही लोगों का सबसे विश्वसनीय साथी था। सुबह की शुरुआत भजन और समाचार से होती थी और रात का अंत मधुर गीतों के साथ। गांवों से लेकर शहरों तक हर घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी। रेडियो ने देश के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह जागरूकता फैलाने का माध्यम बना। किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी, छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और आम जनता के लिए समाचार, यह सब रेडियो के माध्यम से ही संभव हुआ। आज भले ही हमारे पास इंटरनेट, टीवी और स्मार्टफोन जैसे कई विकल्प हैं, लेकिन रेडियो की अपनी एक अलग पहचान और सादगी है। यह आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है। रेडियो की 90वीं वर्षगांठ पर हमें यह याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण माध्यम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में मैं वापस से रेडियो को उसके 90वें वर्षगांठ पर बधाई देना चाहती हूँ।
4: मिस्टर नटवरलाल, आइए, फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म का नगमा आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

राजा हिंदुस्तानी। आइए, इस फिल्म का गीत हम आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं। आवाज़ें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की हैं। समीर ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनैया जम्मो किसान किसानिन दाई बहनी संगी संगवारी मला अन्नू के राम राम जय जोहार। भैया हो आज मैं अबड़ खुश भी हावा काबर जाना था काबर की बड़ा दिन में बैठकी में मैं आए के मौका मिले हावा तुमन संग आज गोड़ बात करे के मौका मिली सावे कहा आनी बानी के जानकारी साझा करे के संगे संग सुघर अकन के लोकगीत सुनवाए के मौका घलोक मिली हावे। ओकर अलावा भैया हो आज के दिन हमार किसान मन के गोड़ बात आप मन तक हबराए के माध्यम होते रेडियो हर तो आज संगवारी हो आप सबो झन के आज के कार्यक्रम में स्वागत हावे। आज हवे शनिचर के दिन अब आप मन रेडियो ला आघू में राग के सुनत भी रहता तेकर पर भी आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हो खैर ये सब बात हर तो होत रहते कहा और आज हवे शनिवार के दिन तो आज जो विषय हवे आज के बात में जो कि कद्दू वर्गीय सब्जी में कीट और रोग नियंत्रण के विषय हवे। भैया हो संगे संग नसीहत में भा नसीहत में तुहर गोठ हावे गोरस ला खराब होए ले बचाए बर शीतलीकरण अपनावा साथ ही टिप में गोड़बात करहा में पौध रोपण हेतु आधारभूत तैयारी और ओकर संगे संग भैया हो आज बहुत ही बड़ा दिवस हावे जो में महान महान रचनाकार राजा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के गोड़बात घलोक आप मन करा में कर हाँ और साझा कर हाँ। तो पहली भैया हो ये बतावा आप मन सब कैसे हावा वैसे घाम हर तो झमाझम भराए हावे तो पंखा एसी कूलर हर तो छोड़े के मन घलोक नहीं करत हो ही लेकिन का करबो भैया हो किसानी बूता हमार जीविका के आधार हावे एला आपन भी जाना था मैं भी जाना था तो घर ले तो निकरेज बर लागी वैसे आप मन के बूता काम में जुताई फंदाई तो बूता आपन यदि करत भी हो या कर भी दारे हो वैसे आप मन किसानी बूता ला तो अगवा के करी दार था काबर की खरीफ फसल के तैयारी घलोक अगवा के करे बर लागथे। भैया हो अतका मैं कि आप मल्ला कि घाम प्यास के दिन तो चलत हावे तो गाय गरवा पशु पक्षी मन के विशेष ध्यान देहे बर लागी छत मा बाहिर मा पानी की व्यवस्था ला जरूर करो साथ ही मनखे होई के नाते हमन के फर्ज बनते भैया हो दीदी बहनी हो कि अपन के लोग लेका और स्यान स्यानिन मन के भी जरूर ध्यान रखन घाम दिन में खास करके उल्टी होगी दस्त होगी सहजा टाइफाइड पीलिया सर्दी खांसी बुखार चेचक ये सब बात हर तो आम बात होगी सावे लेकिन हमला का करना है समय में हमला इलाज करवाना है विशेष ध्यान रखना हावे साथ ही घाम प्यास ले बाँचे बर जो हमन खान पान में जो उपयोग करथन जैसे कि तुहर केला होइस खीरा ककड़ी होइस सलाद होइस आम के पना होगीस कुशियार के रस होगीस दही केला होगीस फल के जूस होगीस ऐसन सबो चीज़ ला हमला खान पान में रखे के काम हावे ताकि हमन स्वस्थ रहन और बीमार ले धुरिया रहन तो ऐसन करके हमन के स्वास्थ्य ला हमन बढ़िया ठिन्ना रख सकथन भैया हो और यदि स्वास्थ्य हमन के ठिन्ना रही तो हमन के बूता काम भी ठिन्ना रही है ना। तो भैया हो ये तो रही थोड़ाकन हालचाल के गोड़ बात में अभी आप मन करा में करें अब आप मल्ला मैं ले चलत हूँ आज के जो विषय हावे भैया हो कद्दू वर्गीय साग पान मा कीट और रोग नियंत्रण के विषय में। भैया हो

मध्यवर्गीय सागमा लौकी तोरई करेला खीरा मखना तरबूज खरबूजमा कीट और रोग के प्रबंधन अबड़ जरूरी हावय। काबर की जानत है भैया हो, फसल लगभग 30% तक नुकसान हो सकत है। तो हमन ला का करना हावय, पहली ले ओकर कीट और नियंत्रण के बारे में जानना अबड़ जरूरी हावय। तो पहली जानो भैया हो, फल मक्खी जो कि मादा कीट फल ले छिलका के तरी अंडा देते, जेकर ले लार्वा फल ला भीतरी ले खा के सड़ा देते। जेकर नियंत्रण बर भैया हो, हमन ला ध्यान रखना हवे और ओकर बर दवा माटी ला हमन ला विशेष ध्यान रख के ओकर जो भी मात्रा हवे उचित मात्रा में हमन ला देहे बर हवे। ओकर बाद भैया हो, लाल भृंग ये कीट नावा पान और कोमल पौधा ला खाते। एकर नियंत्रण बर शाम के बेरा में 5% मैलाथियन चूर्ण ला 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या कार्बरिल ला 0.15% के छिड़काव करे के काम हावय। ओकर अलावा भैया हो, माहू और सफ़ेद मक्खी जो कि पान के रस ला चूसते और मोजेक वायरस फैलाते भैया हो, एकर नियंत्रण बर इमेडाक्लोप्रिड ला और डाईमेथिट के छिड़काव ला करे के काम हावय। ओकर अलावा भैया हो, लीफ माइनर एहर भी एक ठो रोग होते भैया हो, जो कि एक कीट में जो पान में जो होते ओहर टेढ़ा मेढ़ा धारी बनाते, जेकर नियंत्रण बर नीम के तेल के प्रयोग करे के काम हावय। वैसे भैया हो, आप मन किसान हावा तो आप मन हामन ले भी ज़्यादा आप मन जान था, लेकिन बस हामन आप मला सुरता करात रथन माझा माझा में गोड़ बात में। भैया हो, एकर नियंत्रण बर हामन ला चूर्णी फफूंदी जो कि पान और बेल में सादा पाउडर जैसन जमा हो जाते, जेकर नियंत्रण बर केराथेन ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर ले या घुलनशील गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के भुरकाव करे के काम हावय। मृदुरोमिल असीता जो कि पान में पीला धब्बा बनते भैया हो, नियंत्रण बर मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे के काम हावय। मोजेक विषाणु एमा भैया हो, पान हर पीला और मुड़े असन हो जाते कहा, जो कि रस चूस के कीट ला बगराते भैया हो, एकर नियंत्रण बर ग्रसित पौधा ला उखाड़ के जलाए के काम हावय और इमेडाक्लोप्रिड के छिड़काव करे के काम हावय। अगला जानो भैया हो, फ्यूजेरियम उखटा एमा पौधा हर अचानक मुरझा के सुखा जाते, जेकर नियंत्रण बर बीज उपचार करे के काम हावय और प्रतिरोधी किस्म के उपयोग करे के काम हावय भैया हो, ताकि जो भी एमा समस्या आते भैया हो ओकर निदान हो सके। समन्वित कीट और रोग प्रबंधन में मुख्य बात ला जानो भैया हो, फसल चक्र एक एक ठन खेत में बार बार कद्दू वर्गी फसल ला झन लगावा, प्रतिरोधी किस्म में रोग प्रतिरोधी बीजा के प्रयोग करो भैया हो, खेत की स्वच्छता खरपतवार और संक्रमित पौधा ला नष्ट करे के काम हावय। और मल्चिंग में मल्च के उपयोग सफ़ेद मक्खी और एफिडस ला रोके के मदद मिलते। तो भैया हो, ये रही इस मुख्य मुख्य बात कहा, तो आप मन मैं बताया हूँ भैया हो, तो आपन सुरता करके ये बुताला आप मन कर सका था भैया हो। भैया हो, आज और विषय हावे मोर करा नसीहत में, नसीहत में विषय हावा भैया हो, दूध ला खराब होए ले बचाए बर हमन सित्रीकरण ला अपना सकत हन भैया हो, और दूध ला हमन बचा सकत हन। तो भैया हो, दूध ला बचाए बर लंबा बेरा तक यदि ताज़ा रखे बर हावे तो शीतलीकरण हर सबले बढ़िया प्रभावी तरीका हावे। गर्म मौसम में दूध ला स्टोर करे बर वैज्ञानिक और घरेलू उपाय हमन अपना सकत हन, जैसे कि ओमा पहली तो जानो भैया हो, तुरंत दूध ला उबालो 70 डिग्री सेल्सियस में लगभग और 30 सेकंड तक गर्म कराओ, फिर तुरंत ठंडा करे असन तुरंत ठंडा करे बर लागी भैया हो, ऐसन करे ले का होते बैक्टीरिया हर ख़त्म हो जाते। और शीतलीकरण में जानो भैया हो, पाश्चुरीकृत दूध ला हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस या ऊपर ले कम तापमान में रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करे के काम हावय। सफ़ा बर्तन के प्रयोग करो भैया हो, दूध ला हमेशा साफ और बढ़िया धुला हुआ सूखा स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में ही रखे के काम हावय। ठंडा करे के सही तरीका ला जानो भैया हो, गर्म दूध ला सीधा फ्रिज में झन रखाओ, एकर ले फ्रिज के तापमान बढ़ जाते और दूध हर खराब हो सकत हावय। तेकर बर हमन ला पहली वाला कमरा के तापमान में ठंडा करे बर लागी, ओकर बाद में फ्रिज में रखे के काम हावय। तो ये बात ला आप मन सुरता राखे भैया हो। ओकर बाद भैया हो, थोड़ा कन उपाय ला जानो,

0: जैसे कि अदरक और चीनी के प्रयोग ला। एमे का होत भैया हो, दूध उपालत बेरा थोड़कन चीनी डाले ले, एमा जो स्वाद हर नहीं बिगड़े। साथ ही 4 से 5 घंटा ओहर ज़्यादा रही थे। साथ ही थोड़े मात्रा में अदरक के रस डाले ले भी लंबा बेरा तक यह सुरक्षित रखे जा सकत हवे। तो ये बात ला आप मन ध्यान दी है। ओकर अलावा भैया हो, बार बार फ्रिज ले यदि हमन दूध ला अंदर बाहर यदि हमन करत हन तो ओला हमला नहीं करना हवे। एकर ले दूध हर खराब हो सकत है। यदि फ्रिज हर उपलब्ध नहीं हवे भैया हो, तो पानी में राखे और दूध के बर्तन ला एक बड़खा बर्तन में पानी भर के राखे के काम हवे और पंखा के तरी में राखो ताकि दूध हर ठंडा रही। बार बार उबालो दूध ले हर 3-4 घंटा में, एकर कारण भी दूध हर नहीं फाटे। तो हमन के गांव घर के दाई बहनी मन ये बूता ला जरूर करते हैं भैया हो। यदि गोरस सुरक्षित रखना है तो ओला हर 1-2 घंटा में ओला निकाल के ओला एक बार उबालते हैं जरूर, ताकि दूध हर जो है लंबा समय तक सुरक्षित रह सके। ओकर बाद भैया हो, दूध के शीतलीकरण या पाश्चुरीकरण जो हावे एक प्रक्रिया हावे, जेमा कि कच्चा दूध ला एक निश्चित तापमान आमतौर में 72 डिग्री सेल्सियस माँ 15 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा किए जाते। एकर मुख्य उद्देश्य ये हावे भैया हो कि जो हानिकारक बैक्टीरिया जो हावे वह नष्ट हो सके, ताकि दूध ला लंबा बेरा तक ताजगी बढ़ाए जा सके, पानी बर सुरक्षित बनाना हावे। तो ये प्रक्रिया पोषण ला नुकसान पहुँचाए बिना करे जाते। तो आप मन ये बात ला यदि सुने हवा भैया हो, तो जरूर आप मन इला अमल करी हा, ताकि आप मन यदि अगर दूध के व्यवसाय यदि करत हवा भैया हो तो आप मन रे हर बहुत फायदाजनक हो ही। तो ये रिस भैया हो नसीहत के गोट कहा। अब बारी हो चली से आज हवे शनिवार के दिन। तो आज के किसान हवे मुरकरा भैया हो, जोन मन हवे ग्राम भगवानपुर पोस्ट ऑफिस गोरखा रायगढ़ के किसान हवे भैया हो, हेमलाल यादव जी, जोन मन छत मा गृह वाटिका लगा के लाभ लेवा थे और मन बहुत अच्छा से आगू भी बढ़ा था मैं भैया हो, तो आवा गोड़ बात हुई से अनुसुईया साहू के, तो आवा सुनन एक गोड़ बात ला।
1: सिंगवारी हो, मैं हबरे हो गांव भगवानपुर पोस्ट ऑफिस गोरखा जिला रायगढ़ के किसान हावे हेमलाल यादव जी, जोन मन गृह वाटिका लगा के मुफ्त में साग सब्जी पावत हैं। तो आवा जानन ओमन कौन ढंग ले ये खेती ला करत हावे और लाभ लेवत हैं। तो आप मला मोर राम राम।
2: राम राम। मोर नाम हेमलाल यादव है। हमें ग्राम भगवानपुर जो नगर पालिक निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 45 में आते, और मैं गृह वाटिका में सब्जी उब्जी के खेती करें हो छत के ऊपर में।
1: हाँ हाँ।
2: और मोर विचार भी है इस कि छत के मोर तो जमीन नहीं है, तो कम से कम छत हर है। हाँ। तो छत में अगर मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले जाके ऊपर में डाल दें।
1: हाँ।
2: और मैं 4-5 प्रकार के सब्जी लगा दी हूँ।
1: हाँ।
2: तो मोर घर परिवार भर भी चल जाए, ऐसे विचार करके जो है मैं मिट्टी चढ़ाए हूँ। और मिट्टी चढ़ा करके वो मैं अभी जुलाई में मैं फसल भी लगाए रहे हैं।
1: हाँ।
2: जो उन फसल ना जो अभी मैं खा के तैयार भी कर दे रहे ना, और दूसरा फसल भी लगा दे हूँ लाल भाजी के। मोर घर परिवार के जो साग सब्जी है, यहाँ तक धनिया मिर्चा टमाटर मूली और सब्जी भिंडी है, बरबट्टी है, डोड़का है, तुरई है, वो सब हर जो है मोर गृह वाटिका ले निकल जाते।
1: तो हेमलाल यादव जी, इतना बढ़िया विचार आपके मन में है, इसे बहुत ही खुशी के बात है और प्रेरणादायक के घलों की बात हावे। और संगवारी मन के भी ऐसे विचार आना भी चाहिए जैसे आप मन के मेज। तो मोर ये कहना रहीस, आप मन अतका सुघर गृह वाटिका लगाए हवा है ना।
2: हाँ।
1: तो माटी के व्यवस्था आप मन कहाँ ले करो?
2: माटी के व्यवस्था ला जहाँ उपजाऊ मिट्टी रहीस खेत के।
1: अच्छा।
2: वो उपजाऊ मिट्टी खेत ला जा करके जो है साइकिल में बोरी में भर भर के लाइन काबर छत में चढ़ाना रहीस।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ा थोड़ा बोरी में भर के छत में जो है मैं स्वयं थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाए, और आज जो है ओकर भरोसा से 3-4-5 प्रकार के सब्जी जो है मोला वो गृह वाटिका ले ही प्राप्त होते।
1: बहुत बढ़िया।
3: ऐसे इतना बढ़िया आप मन की सोच और विचार दे के बहुत अच्छा लगी हमारा। तो किसान जैसे आप मन गृह वाटिका के जो बूता करा था आप मन, तो बीज वगैरह के व्यवस्था ला आप मन कहाँ लेकर आओ?
2: बीज उज के व्यवस्था ला वैसे बीज बीज में रेडियो ला सुनत रहन।
3: हाँ।
2: तो पता चलते कि प्रमाणित बीज ला लिया।
3: हाँ।
2: तो हमन रायगढ़ में आकर के प्रमाणित दुकान मन ले जो है।
3: हाँ।
2: अच्छा से बीज ला ले जाथन।
3: अच्छा।
2: जो हर अभी तक ले हमला बीज हर अच्छा ही।

0: मिले हैं।
1: बहुत बढ़िया। तो कर बाद जैसे बीज तैयारी तो आपन करा है ना, तो फिर का का में आऊ कैसे कैसे करे बल लागी से खाद।
0: तैयारी करे में तो मिट्टी ला पहले चढ़ाएं, और मिट्टी और खाद ला चढ़ाएं, और मिट्टी और खाद ला बराबर कर दें, और बराबर करके अब छत के ऊपर में खेती ला करना रही तो छत ला भी हम ला बचाना रही।
1: हाँ
0: तो एकर बर जो है हम 3 फीट के चौड़ा के प्लास्टिक लगा दें, और
1: अच्छा
0: प्लास्टिक के ऊपर में मिट्टी ला कर दें, और मिट्टी और पानी के छिड़काव पर जो है बगल बगल में ईंटा लगा दें, और बढ़िया दो प्रकार के एक एक एक प्रकार के तो खेती कर दे रहे ना, एक घर अभी फिर भाजी उजी लगा दी हन, भाजी उजी है लगा दी हमला 15-16-17 दिन में ओहो हर निकल जाही,
1: अच्छा
0: तहाँ फिर हम भिंडी बरबट्टी के तैयारी में लग जाबो।
1: बहुत अच्छा बात है। तो पानी वानी ले कैसे देता किसान।
0: पानी उनी के व्यवस्था तो ज़्यादा वैसे नहीं लगे, और घर में बोर है, जब नहाए धोए खानी चला रहते तब थोड़ा से में 1-2 बाल्टीन में ऐसे चल जाते, सुबेरे शाम थोड़ा थोड़ा छींच देते।
1: ज्यादा पानी की
0: हाँ
1: आवश्यकता
0: ज्यादा
1: पड़वे
0: पानी की
1: नहीं करे।
0: आवश्यकता नहीं पड़े।
1: और जैसे खातू उर्वरक आप मन का उपयोग करते हैं।
0: खातू के अभी तक ले तो हैं घर के बुजुर्ग मनो भी बताइन और लड़का मन भी बताइन कि घर के खेती होते तो हमला मने राखड़ खातू देना नहीं है, खाली गोबर खाद से ही उपजा, तो गोबर खाद से उपजाए हैं ना तो ओकर देख रेख के शायद हमला ज्यादा प्रभाव पड़ा देखाए, तो बीमारी भी नहीं लगे और बढ़िया से हमला फसल मिला तो बिना
1: बीमारी
0: दवाई के। हाँ
1: बिना दवाई के तो बहुत बढ़िया बात हवे। पोषक ले भरपूर आप मतलब साग सब्जी भी मिलत हवे
0: हाँ
1: और साथ में बीमारी भी नहीं लगत हवे तो बहुत ही अच्छा है कहा
0: हाँ
1: है ना। स्वास्थ्य बढ़िया रही ऐसे पोषक सब्जी ला खाए ले
0: हाँ
1: है ना। तो जैसे घर खाए पर तो आपने लगा था जैसे बाज तो कैसे करता वाला।
0: बांध जाते तो जैसे दोस्त से यार रहते बेचे के लायक तो नहीं है, काबर छत के ऊपर में थोड़ा से रहते
1: हाँ
0: तो बीच बीच में आज डबल नहीं खान तो अपन दोस्त ला दे दे या बहनी ला दे देवा या बेटी घर पहुंचा देवा, बिना
1: अच्छा
0: राखड़ के पापा के यार अच्छा लागते करके
1: हाँ
0: भी
1: हाँ
0: कहते तो
1: बिल्कुल।
0: पहुंचाए के व्यवस्था खोले
1: नहीं
0: करथन।
1: नहीं बहुत बढ़िया है ऐसे ही होना चाहिए। और आप मन बढ़िया अपन घरे में ही घर के छत में ही गृह वाटिका लगा के इतना सुघर साग सब्जी लगा के फायदा लेवा था यहाँ अच्छा ही बात हवे कहा। ऐसे और भी इस किसान मतलब भी जेकर छत कोलाबारी हवा तेहू मन ऐसे करें और लाभ लेवाएं है ना। और जैसे कीट व्याधि भी नहीं लगे कहा था तो वो अच्छा बात हवे
0: हाँ
1: है ना। तो वत की आपने सुघर बढ़िया जानकारी देवा किसान बहुत अच्छा लागिस। और ऐसे सुन के और संगवारी मन भी अहू मन भी ऐसा करें और लाभ लें। तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद हवे। राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहा आज के किसान मा ग्राम भगवानपुर पोस्ट ऑफिस गोरखा के किसान रहीन हेमलाल यादव जी जोन मन छत मा गृहवाटिका लगा के लाभ लेवत हैं। बहुत अच्छा ही ओमन खेती करके लाभ लेवत हैं, अपन के घर परिवार पर साग सब्जी के व्यवस्था करत हैं। अच्छा बात हवे कहा, ऐसा ही हमला भी और संगी संगवारी मला भी ऐसा बूता करके अपन स्वयं बर साग पान लेके फायदा लेना हवे। भैया हो, आज के टिप में विषय हवे पौधरोपण हेतु आधारभूत तैयारी। भैया हो, पौधरोपण बर सफल शुरुआत होते स्थल के चयन, माटी के परीक्षण, उचित जल निकासी, गड्ढा के खुदाई, खाद गोबर कंपोस्ट मिश्रित माटी ले भराई और पौध के परिवहन के सावधानी आवश्यक हवे। भैया हो, रोपण ले एक दो महीना पहली गड्ढा तैयार करे के काम हवे, पौधा ला धूप हवा ले बचाए के काम हवे और रोपण के बाद मल्चिंग और सिंचाई अवश्य करे के काम हवे। भैया हो, थोड़ाकन विस्तृत एकर जानकारी आप मन जानो। पहली तो स्थल और योजना के चयन होना अबड़ जरूरी हवे, जेमा सूर्य के प्रकाश के उपलब्धता जांचें, परियोजना पर स्थान भूइयां के पहचान करें। ओकर अलावा माटी के तैयारी में माटी के संरचना और PH के जाँच करावे। भारी माटी में रेत और रेतीला माटी में कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट मिलाए के काम हवे। ओकर अलावा भैया हो, गड्ढा के खुदाई और भराई, जेमा आमतौर में 2x2x2 फीट के लंबाई चौड़ाई और गहराई के गड्ढा खोदे के काम हवे। ऊपरी माटी ला एक तरफ और तरी के माटी ला दूसर तरफ रखे के काम हवे। माटी में गोबर के खाद कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मिला के गड्ढा ला भरे के काम हवे। साथ ही भैया हो, पौधा के चयन और परिवहन में जाना, स्वस्थ और स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्रजाति मन के चयन करे के काम हवे। ओकर अलावा नर्सरी ले स्वस्थ पौधा चुनाव और ले जात बेरा धूप और हवा ले बचाए के काम हवे। रोपण के प्रक्रिया में भैया हो, गड्ढा के केंद्र में पौधा लगावो और जोन गहराई में नर्सरी में रहीस तिसने ही हमला रोपण के समय करे के काम हवे। देखभाल भर रोपण के तुरंत बाद पर्याप्त पानी देवो, माटी के नमी बनाए रखे भर 1 इंच गहरा मल्चिंग करे के काम हवे, लेकिन तना ले सटा के झन करो, ये बात ला आप मन विशेष ध्यान देवो। पौधा लगाए के पहली के तैयारी ले पौधा ला बने बाढ़े में मदद मिलते भैया हो। हमेशा पौधा ले बड़े गड्ढा खोदे के काम हवे और माटी में जैविक पदार्थ मिलाए के काम हवे। संगे संग गड्ढा में बने पानी देवो ताकि आसपास के माटी पौधा पर पर्याप्त नम रहे। पौधरोपण के मुख्य उदाहरण और उपयोग पर्यावरण संरक्षण सड़क के तीर मा खाली भूखंड या पार्क मा पेड़ ला लगाए के काम हवे। वनीकरण जैसे कि नदी तटवर्ती क्षेत्र या वन मा बड़े पैमाना मा छोटे पौधा लगाए बर हवे। व्यवसायिक खेती जैसे कि तुम्हार काफ़ी चाय रबड़ या फल के बगान लगाए के काम हवे। घरेलू उपयोग मा जानो भैया हो, जेमा गमला बगीचा में घर के सजावट या छाया बर छोटे पौधा रोपे के काम हवे। ये न केवल तुम्हार कार्बन डाइऑक्साइड ला कम करते भैया हो, बल्कि मृदा अपरदन ला रोके के और वन्य जीव ला आवास प्रदान करे मा भी सहायक होते। तो ये रहीस भैया हो, थोड़ा कन पौधरोपण हेतु जो आधारभूत तैयारी होते वो विषय में गोट रहीस कहा, आप मन सुने हवा तो जरूर आप मन लाभ लिया। अब भैया हो, गोठे बात तो होवत रही कहा, अब मैं आप मला सुघर अगन के लोकगीत गति में ले चला था भैया हो, जेमा मैं लोकगीत ले हव छेरी चराए छेरका टूरा, जेमा कलाकार हवें भैया हो द्वारका यादव और सरस्वती निषाद। अब ये गीत हर हवा भैया हो ददरिया, तो आवाज सुनन ए सुघर अगन के लोकगीत ला।

श्रोता संगवारी हो, अभी आपन सुघर अकन के लोकगीत सुना। मला उम्मीद है आप मला बढ़िया अच्छा लागिस होही भैया हो। द्वारका यादव और सरस्वती निषाद के गीत रहिस, गीत रही ददरिया। भैया हो, अब बारी हो चली से विषय कति अंके। तो अभी मोर करा विषय हावय कालजयी रचनाकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जयंती, और साथ ही औ हावय कहा तो पहली इनके विषय में आज मैं गोड़ बात करत हूँ भैया हो। भैया हो, रविन्द्रनाथ जी के जो जयंती हावय, प्रति बच्चर हमन बांग्ला पंचांग के अनुसार बैसाख माह के 25वां दिन मनाए जाते, जेला पोचिसे बैसाख कहे जाते। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये तिथि ला 7 से 9 मई के आसपास आते भैया हो। ये जयंती गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के अवसर में मनाए जाते। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म हर 7 मई 1861 के कलकत्ता के जोड़ा साको में हो रहीस। उकर ख्याति भारत के महानतम लेखक, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी मले एक के रूप में हावय। बरस 2022 में ये जयंती 7 मई 2023 में 9 मई के मनाएगीस। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत के महानतम हस्ती मले एक माने जात रहिन। वो एक कवि, लेखक, विचारक, दार्शनिक, गीतकार और चित्रकार रहिन भैया हो, जेमन पश्चिमी विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहिन भैया हो। विश्वला उकर सबले बड़े देन संभवतः शांति, अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय वाद के अवधारणा हावय। उकर जन्म कोलकाता पिता के नाव देवेंद्रनाथ टैगोर और माता के नाव शारदा देवी रहिस। टैगोर अपन 13 भाई बहनी माँ सबले छोटे रहिन। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन ले ही बैरिस्टर बनना चाहत रहिन। तेकर बर 1878 माँ इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में दाखिला लीन और बाद में लंदन के विश्वविद्यालय में कानून के पढ़ाई घलो करीन। लेकिन 1880 में बिना परीक्षा देहे, बिना कानून के डिग्री ले ही वापस भारत आ गईन भैया हो। प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार के सदस्य के रूप में टैगोर रंगमंच, गायन, शास्त्रीय संगीत और साहित्य के वाद विवाद के कौशल के धनी रहिन। ओमन मानवतावाद और सार्वभौमिकता के वकालत घरों करीन। टैगोर की स्थान ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर में विशिष्ट हावय। ये 1913 में गीतांजलि बर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला गैर यूरोपीय रहिन। यमन ये कार्य के माध्यम ले भारतीय साहित्य ला विश्व में एक नामा पहचान दिन। यमन 3 देश भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश पर राष्ट्रगान के रचना के प्रेरणा स्रोत बनी। 1915 में यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज पंचम ले टैगोर ला नाइटहुड के उपाधि ले सम्मानित घलो किए गिस। हालांकि एमन 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध स्वरूप अपन नाइटहुड उपाधि ला त्याग कर देह रहिन। एमन 2200 ले भी अधिक गीत लिखिन, जेला रविन्द्र संगीत के नाम से जाने जाते। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली ले प्रभावित रहिस भैया हो। 11 बरस के आयु में उपनयन के बाद टैगोर और उकर पिता फरवरी 1873 में कई महीना भर भारत भ्रमण पर कलकत्ता ले रवाना हो रहिन। इमन अपन पिता शांति निकेतन, जागीर और अमृतसर के दौरा घलो करिन और हिमालयी पहाड़ी स्टेशन डलहौजी घलो गे रहिन। वहाँ टैगोर जी जीवनिया घलोक पढ़ीन, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत के अध्ययन घलोक करीन। कालिदास के शास्त्रीय कविता के अध्ययन घलोक करीन और 1873 में अमृतसर में अपन एक महीना के प्रवास के दौरान में स्वर्ण मंदिर में गाए जाने जाए वाला मधुर गुरबानी और नानक बानी ले प्रभावित होइन, जेकर बर पिता और पुत्र दोनों नियमित रूप ले जात रहिन। वो अपन पुस्तक माई रेमिनिसेस में लिखिन 1912 में, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर मुझे सपने की तरह याद आता है। कई सुबह मैं अपने पिता के साथ झील के बीचों बीच स्थित सिखों के इस गुरुद्वार दरबार में गया हूँ। वहाँ पवित्र भजनों की गूंज निरंतर सुनाई देती है।
मेरे पिता श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बैठे कभी कभी स्तुति गान में अपना स्वर मिला देते थे और किसी अजनबी को अपनी प्रार्थना में शामिल होते देख वे उत्साहपूर्वक सौहार्दपूर्ण हो जाते थे और हम चीनी के क्रिस्टल और अन्य मिठाइयों के पवित्र प्रसाद से लदे हुए लौटते थे। यमन के बहुत ही अच्छा पुस्तक रहीस भैया हो। एमन सिख धर्म ले संबंधित 6 कविता और सिख धर्म के बारे में बंगाली लैका के पत्रिका में कई लेख लिखिन हावय। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह में कविता हावय जेमा हावय भैया हो तुहर गोविंद और शेष शिक्षा 1899 अंतिम शिक्षा के रूप में अनुवादित हावय। बंदा बहादुर में कविता एमा भी उसने लिखे गए हावय भैया हो। और साथ ही टैगोर जी जोरो साको लौट आइन और 1877 तक कई महत्वपूर्ण रचना घलोक पूरा करीन जेमा एक विद्यापति के मैथिली शैली में लिखे गए एक लंबा कविता रहीस। एमन मजाक में दावा करे रहीन कि ये 9 खोजे गए 17वीं शताब्दी के वैष्णव कवि भानु सिंह के खोए हुए रचना हावय। क्षेत्रीय विशेषज्ञ एला काल्पनिक कवि के खोए हुए रचना घलोक मान लें। एमन बंगाली में लघु कथा विद्या में भिखारिनी के पदार्पण किए जेमा वर्ष प्रकाशित संध्या संगीत में निर्झरे स्वप्नभंग कविता घलोक शामिल हावय भैया हो। 1901 में टैगोर शांति निकेतन चल दिन और वहाँ संगमरमर में फर्श वाला प्रार्थना कक्ष रहीस जेमा मंदिर में एक प्रायोगिक विद्यालय और पेड़ के झुरमुट उद्यान और एक पुस्तकालय के साथ एक आश्रम की स्थापना घलो करीन। वहाँ उकर पत्नी और उकर दूठा लैका के निधन घलो हुईस वहीं जहाँ उकर पिता 1905 में निधन हुईस। एमन विरासत के हिस्सा के रूप में मासिक भुगतान और त्रिपुरा के महाराजा ले आए अपन परिवार के आभूषण के बिक्री पूरा में समुद्र किनारे के बंगला और पुस्तक रॉयल्टी के रूप में एमन मात्र 2000 रुपया प्राप्त होत रहीस जेमा एमन 1912 में टैगोर जी अपन 1910 के रचना गीतांजलि के अंग्रेजी में अनुवाद घलोक करीन। लंदन के यात्रा के दौरान एमन विलियम बटलर येट्स और एजरा पाउंड सहित अपन प्रशंसक के साथ ये कविता साझा घलोक करीन। वैज्ञानिक नियम के प्रति उकर सम्मान और जीव विज्ञान भौतिकी और खगोल विज्ञान के उकर अन्वेषण उकर कविता ला प्रभावित करी सावे भैया हो जेमा व्यापक प्रकृतिवाद और यथार्थ झलक थे जेमा 1937 मा तीन संगी 1940 और गलप सल्पा मा विज्ञान के प्रक्रिया और वैज्ञानिक के वृत्तांता के कहानी घलोक पिरोगी सावे। उकर अंतिम 5 वर्ष निरंतर पीड़ा और बीमारी के 2 लंबा दौर ले चिन्हित हावय जेमा शुरुआत तब हुई भैया हो जब टैगोर 1937 के अंत में बेहोश हो गिन और कुछ समय तक कोमा में घलोक रहीन अमृत्यु के करीब रहीन। एकर बाद 1940 के अंत में एमन ऐसने ही एक दौर रहीस जेमा वो कभी भी उबर नहीं पाइन और उकर विकराल बरस की कविता उकर सर्वेश्व रचना में ले हावय। 7 अगस्त 1941 के 80 वर्ष के आयु में टैगोर जी की मृत्यु के साथ लंबा समय तक पीड़ा के दौर समाप्त हुईस। एमन जोरा साको के हवेली के ऊपर कमरा में रहीन भैया हो जहाँ वो बढ़िया पले बढ़े रहीन। ये तारीख आज भी शोक मनाया जाते भैया हो। तो आज हमन सत सत नमन करत हन जो कि इतना बढ़िया कालजयी रचनाकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज हमन सुरता करत हन भैया हो। हमारा आकाशवाणी परिवार कति ले सत सत नमन हावय। छोटकन कविता हावय भैया हो जो मैं आप मला बताना चाहा हा। मैं अपन जन्मदिन के बीच खोया हूँ मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है उनके स्पर्श की धरती के अंतिम प्रेम की मैं जीवन का अंतिम उपहार स्वीकार करूँगा। मैं मनुष्य का अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करूँगा। आज मेरा थैला खाली है मैंने अपना सब कुछ दे दिया है बदले में यदि मुझे कुछ भी प्राप्त होता है थोड़ा सा प्रेम थोड़ी सी क्षमा तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा जब मैं उस नाव पर सवार होऊंगा जो निरर्थक अंत के उत्सव की ओर ले जाती है। सोचा भैया हो इतना बढ़िया इतना सुघर कविता रहीस टैगोर जी के आज मैं सत सत नमन करत हूँ। हमारा आकाशवाणी परिवार का तिले भी भैया हो आज हमन सुरता करत हन आज उकर जयंती हमन मनात हन भैया हो। तो भैया हो अब मैं अब गोठला अब यही ले मैं विराम देवत हूँ भैया हो। अब मैं आप मला फिर लोकगीत का तिले चलत हूँ भैया हो। अभी जो लोकगीत हावय जेमा कलाकार हावय भैया हो सादरा मरावी जी और एक गीत है
हाँ बढ़िया, अच्छा सुघर अगन के ददरिया गीत ही हावे, तो आवा सुनन ये लोकगीत ला।

श्रोता संगवारी हो, अभी आप मन सादरा मराबी जी के गीत सुनाओ। अब विषय हावय प्रवासी पक्षी के रहवास के सुरक्षा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। श्रोता संगवारी हो, 2006 मा संयुक्त राष्ट्र हर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के स्थापना करीस, जो कि हर साल मई के दूसर सप्ताह मा मनाए जाथे। और ये आयोजन हर संयुक्त राष्ट्र के अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षी के संरक्षण समझौता के तहत दुनिया के विभिन्न क्षेत्र के बीच प्रवासी संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाए के प्रयास के रूप में शुरू किए गिस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के कार्यक्रम 118 देश में आयोजित किए जा चुके हवें। हर बच्छर संयुक्त राष्ट्र अधिकारी कार्यक्रम पर एक एकीकृत विषय के घोषणा करते, जिला पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में जाने जात रहीस। ये कार्यक्रम हर भैया हो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देश में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास और पर्यावरण शिक्षा पर समर्पित हावय। स्मिथसोनियन प्रवासी पक्षी केंद्र द्वारा शुरू किए गिस अब उकर समन्वय एनवायरमेंट में फॉर द अमेरिकाज द्वारा किए जाते। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर में अमेरिका और कनाडा में 19 मई के मेक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका, कैरिबियाई देश में हर बच्छर अक्टूबर के दूसर शनिवार के मनाए जाते। ये कार्यक्रम आम जनता ला स्वस्थ पक्षी आबादी बनाए रखे और प्रवासी पक्षी ले उपयोग किए जाए वाला प्रजनन, गैर प्रजनन और पड़ाव स्थल के रक्षा के प्रति जागरूक करते। भैया हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के कार्यक्रम हमेशा औपचारिक विज्ञान शिक्षा और अनौपचारिक विज्ञान सीखे की गतिविधि होते, जैसे कि पक्षी अवलोकन भ्रमण, कला प्रतियोगिता, प्रकृति आधारित उत्सव और प्रस्तुति। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर, एक्वेरियम, संरक्षित क्षेत्र, जीव मंडल, संग्रहालय और स्कूल मन में आयोजित होते। तो भैया हो, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हावय कहा, तो मैं तो यही कहा, हमला दृढ़ संकल्प लेना हावय कि जतका पक्षी मन जैसन पहले रहीस भैया हो, जन्म लुप्त होत हावय, तो अब हमला ये करना हावय कि जतका बहाँचे हावय तो पक्षी के सुरक्षा पर हमला अपन तरफ ले कुछ न कुछ योगदान हमला देना हावय। जैसे कि पक्षी मन पर हमला छत में, अपन आंगन में हमन ओकर पर पानी की व्यवस्था करन, दाना रखन, ताकि ओमन दाना चुगें और पानी पी के अपन के प्यास ला ओमन बुझा सकें। तो ऐसा करके हमन जो पक्षी दिवस जो मनाथ भैया हो, वह हमन के सार्थक हो सके। भैया हो, अब फिर मैं लोकगीत कती आप मला मैं ले चला था भैया हो। अगला लोकगीत हावय भैया हो, एमा कलाकार हमें रेखा जल छत्री के, अगीत हावय हर भड़थरी गीत भैया हो। अगीत के बोल हावय घोड़ा रोवे घोड़ सारमा। तो आवाज सुनन इस सुघरकन के लोकगीत ला।

बनेच प्रभावित होईन। तेकर बर येला संरक्षित पुत्र अर्थात मानस पुत्र कहे जात रहीस। गोखले जी अंग्रेजी सीखे के संग पश्चिमी राजनीतिक विचार ले अवगत कराए गिस। जॉन स्टुअर्ट मिल एडमंड बर्क जिसे सिद्धांतकार के महान प्रशंसक घलोक बनी। गोखले जी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अभियान में योगदान घलोक दिन। गोखले जी महात्मा गांधी के प्रारंभिक वर्ष में उकर मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध रहीन। 1912 में गांधी जी के निमंत्रण में गोखले दक्षिण अफ्रीका गिन। 1920 तक गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उभरीन। अपन आत्मकथा में गांधी जी गोखलेला अपन गुरु और मार्गदर्शक कहें। गांधी जी गोखलेला एक प्रशंसनीय नेता और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी पहचाने। उला क्रिस्टल के समान शुद्ध, मेमना के समान कोमल और शेर के समान बहादुर और अत्यंत शिष्ट और राजनीतिक क्षेत्र में सबले परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में वर्णित करें। गोखले के 2 बार बिहाव हुईस। पहली 1880 में जब किशोर रहीन सावित्री बाई ले, जो कि एक असाध्य रोगले पीड़ित रहीन। दूसर बिहाव 1887 में ऋषि बामा ले हुईस। सावित्री बाई जीवित रहीन। दूसर पत्नी ले 1999 में 2 ठन बेटी होय के बाद निधन हो गए। पैतृक घर पुणे में हावय भैया हो। आज भी गोखले के वंशज मन के निवास स्थान हावय। साथ ही रत्नागिरी के तामनमाला मा पैतृक गांव हावय, जिहां गोखले के पैतृक संबंधी अभी भी निवासरत हावय। तो भैया हो, आज भी गोपाल कृष्ण गोखले जी के जयंती हम मनात हन भैया हो। तो आज सत सत नमन करत हन हमारा आकाशवाणी परिवार का तेले। तो भैया हो, ये तो रहीस गोड़ बात कहा। अब फिर अभी समय तो पूछा ना। तो संगवारी हो, अब बारी हो चली से औ हवा हमन करा प्रश्न हवा। भैया हो, आज हवै शनिचर के दिन आवाज हमन कर कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न हवै। प्रश्न लिखा संगवारी हो, कालजी रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाए जाते, यह राज के प्रश्न हवै। तो सही उत्तर लिख के आप मन चिट्ठी पत्री के माध्यम से लिख के भेजे संगवारी हो। आपके चिट्ठी पत्री ला हमन शामिल करबो और आप मन के अगोरा भी करबो भैया हो। तो ये तो रहीस आज के प्रश्न। एक घऊ आप मला प्रश्न ऊ कर देत हो, कालजी रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाए जाते, तो सही उत्तर आप में चिट्ठी पत्र के माध्यम से लिख के भेजिया। तो किसान भैया हो, जात जात में यही कहा आप मल्ला कि आप मन खास करके आप मन घाम घाम जब भी बाहर निकला था तो आप मन टोपी चश्मा गमछा ये सब आप मन बिल्कुल उपयोग करा भैया हो। और घाम ले बहाँचाओ, पानी ले बढ़िया खूब पियो भैया हो। साथ में लू ले बहाँचे बर गोंदली के उपयोग जरूर करा और संग में रखाओ भैया हो। और संग में पानी के बोतल जरूर रखाओ और ऐसा करके अपन के स्वास्थ्य ला ध्यान रखाओ। ओकर साथ साथ ये कहाँ भैया हो, अभी के मौसम हिसाब से मौसम बेरा के हिसाब से अपन के खान पान ला भी ध्यान देव। और जब भी तबियत यदि ज़्यादा बिगड़ा थे भैया हो तो देरी नहीं करके आप मन तुरंते डॉक्टर करा जावा और इलाज करावा। काबिर के अभी के मौसम बेरा के हिसाब में भैया हो लूहर तो लक्षण यदि दिखा थे आप मन ला तो आपन बेरा नहीं करके तुरंते इलाज करावा। ऐसा करके भैया हो आपन स्वस्थ रह सका था। अब क्रम में जाए के बेरा भी हो चली से तो अपन संगवारी अन्नू ला देवा विदा। जाए के बेरा में अन्नू के राम राम, जय जोहार।

0: यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।
1: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

विवाह ग्रुप के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में समीर के लिखे हुए गीत को। संगीत है नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम दामिनी।

0: आकाशवाणी एट 90 में आइए सुनते हैं रेडियो श्रोता विनोद कुमार पटेल की प्रतिक्रिया।
1: आकाशवाणी एट 90।
2: नमस्कार, मैं विनोद कुमार पटेल खपरापाली बरम किला से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आकाशवाणी रायगढ़ का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम जैसे श्रोताओं तक निरंतर उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पहुँचा रहा है। मैं विशेष रूप से आकाशवाणी रायगढ़ के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, चाहे वह कृषि से जुड़े कार्यक्रम हो, शिक्षा पर आधारित चर्चाएं हो, स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित प्रसारण हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। सभी अत्यंत उपयोगी, रोचक और समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होते हैं। आज का कार्यक्रम भी अत्यंत प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण रहा। इसकी प्रस्तुति शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी, जिससे हर वर्ग का श्रोता आसानी से जुड़ सका। इसमें दिए गए उदाहरण और संदेश हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे, जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। आज के समय में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है जो हमें सही दिशा दिखाएं और सकारात्मक सोच विकसित करें। आकाशवाणी रायगढ़ इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे ही उपयोगी और प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे, जिससे हम सभी को नई जानकारी और प्रेरणा मिलती रहे। अंत में आकाशवाणी रायगढ़ की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
9: और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: फिल्म संगीत के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में समीर के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम सड़क।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8:45 में थोड़ी देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17

0: स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविद भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक संगीत। हाँ, यानी कि वही गीत जिनके नाम पर फिल्में बनी हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो फिल्म का नाम है वही गीतों में भी आपको मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। स्वानंद किरकिरे के बोल है अजय अतुल का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं रामलीला फिल्म का ये गीत, आवाज भूमि त्रिवेदी की। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: एस पी बाला सुब्रमण्यम और जॉनीटा गांधी की आवाजों में सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।
1: Move your body, there is no party like a party in Chennai.

0: याद करते करते
1: छाया गीत
0: लग जा गले।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

0: जाएगी।
1: तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। विविध संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली के गाए हुए इस गज़ल को। शायर हैं दाग दहलवी।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए हुए इस गीत को, रचना है नुसरत बद्र की।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई

0: अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

उदित नारायण के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन राग सोहनी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं अनिंदो चटर्जी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी के अंतर्गत पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन राग सोहनी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे अनिंदो चटर्जी। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी

0: अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu TVK, Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK, and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chinnithala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister, and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के प्रसारण के साथ सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।